और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आएं कि न तो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनों, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं।

0: आमीन।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू, लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू।

हा जी समय तुफ़ैल संजराणी जी इन कलाम में असां खां कुझु मालूमात घुरे थो। कलाम त अलाए जे शामे राज़ी आहे, अलाए जे कंहिंसां राज़ी आहे, त राज़ी उहा त पंहिंजे नफ़्स सां झेड़ो कयो, पंहिंजे नफ़्स सां विढ़ो, पंहिंजे नफ़्स ते कंट्रोल कयो। राज़ी उन में आहे त ॿियनि जा हक़ न खाओ ऐं ॿियनि जा हक़ कयो, इन में रब साईं राज़ी आहे। पर साईं जा असां जेको अॼोको प्रोग्राम आहे रोशन सुबुह जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तव्हां ॿुधो पिया, त असां जेको अॼोको प्रोग्राम आहे असांजो प्रोग्राम पंहिंजे पाकिस्तान मिठड़े मुल्क लाइ आहे ऐं मारकाए हक़ ऐं बनाने मरसूस जे नाले सां जेको असांजे अॻिले साल मुल्क पाकिस्तान जी हिंदुस्तान जी जंग थी, उन हवाले सां असांजो असांजी कामयाबी थी, असांजे मुल्क जी, असांजे मिठड़े मुल्क जी कामयाबी थी, असांजे प्यारे पाकिस्तान जी कामयाबी थी। ऐं उन में जेको किरदारु आहे, उन में जेको सॼो करेक्टर वञे थो, उहो असांजी पाक आर्मी ईंदी आहे, असांजो पाक फ़ौज जो आहे। त पाक फ़ौज जी कामयाबी असांजी कामयाबी आहे ऐं पाक आर्मी जी कामयाबी असांजी कामयाबी आहे। त असां ही जेको हफ़्तो न पर पूरा 10 ॾींहं असांजे मुल्क में इहो मल्हायो वञे पियो मारक हक ऐं बनानी मरसूस जे हवाले सां। त असांजो जेको हीउ अॼोको प्रोग्राम आहे जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ते, असांजो बि हीउ जेको प्रोग्राम आहे मारक हक ऐं बनानी मरसूस जे नाले सां असां उन जे नाले पिया कयूं।

जीएसएम प्रोग्राम रोशन सुबह मां ॿुधो पिया जीएफएम 88 जे नेटवर्क तां ऐं असांजो जेको अॼोको प्रोग्राम आहे मारकाई हक ऐं बनानी मरसूस जे नाले सां आहे ऐं असांजो जेको हीउ सॼो प्रोग्राम आहे पंहिंजे मिठड़े प्यारे मुल्क पाकिस्तान लाइ ऐं असांजो हीउ प्रोग्राम अॼु पाक आर्मी लाइ पाक फ़ौज लाइ आहे। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं। हिन वक़्तु हलूं पिया नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Manis ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: हाँ, अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज. बुधंदा रहो.

ਸਾਲ ਤੁਜੋ ਗੁਰ ਪੱਲਵ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਗੁਰ ਪੱਲਵ ਸਾਲ

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदारो।

0: This time check is brought to you by
1: Cadet College Jagbabad. अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
2: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा. राबता 0333-733-1172.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: जिन्होंने हथ में आए जिनके हेठ में हथियार इस्तेमाल करने जो मौके मिले हा त हमले में देर न कनि हा. ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाका सदर ट्रंप चयो आहे त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमलदार मंत्रो कयो.

असम में ईरानी बहरीन के निशानो बढ़ायो ऐं खुमेर ऐं सरक कुसम ऐं बंदर अब्बास गाह ते हमला कया। खातमुल अंबिया फोर्स जा बि कार्रवाई कंदे चाबारवे जो अपना हर्बस जे ॾखण में अमरीकी जहाज़ खे निशानो बणायो। सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरान नंढनि ॿिणनि ते हमिलो कयो, जवाबी कार्रवाई तौर ते उन्हनि हंधनि खे निशानो बणायो जितां हमिलो कयो वियो। अमरीकी फ़ौजी असासनि खे को बि नुक़सान आहे पए थो। उहा मुख़्तसिर कार्रवाई हुई जेका मुकमल थी वई आहे, उन सां सीज़फायर मुआदे ते फ़र्क़ु न पवंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशन

भारत बक्सर में दहशतगर्द लाइ दहशतगर्द तंज़ीम उनके फंडिंग करे रो आ भारत सां मौजूदा शेतान कंहिं बि वक़्त वधीक तकरार जो सबब बणजी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे अमुन ख़ातिर ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो फ्रांसी टीवी खे इंटरव्यू।

किलो उहो किलो सन ने पक्के नुसरन सां 1797 ईस्वी में मीर सोराब खान जी वज़ीर तामीरात सराई मोहम्मद सालेह ज़हरी बलोच जी निगरानी हेठि ठहियो ऐं हिन किले में किरोड़े सिरूं इस्तेमालु थियल आहिनि ऐं किले जी सूंहं सोभ्या में इज़ाफ़े लाइ कंगड़ा ऐं सिरनि जे सिटरा सां सुहिणियूं डिज़ाइनियूं ऐं भितियुनि ते रखियूं वयूं। त साईं मुंहिंजा इहे पुराणे दौर में जंग जे लाइ विढ़ण जे लाइ ऐं पंहिंजे हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजे बचाव लाइ इहे किला कोट किला ठाहिया वेंदा। पूरे पाकिस्तान में पूरी सिंध में पूरे हर सूबे में अहिड़े क़िस्म जा जंगी किला मौजूदु आहिनि। त साईं मुंहिंजा असांजो प्यारो वतन पाकिस्तान जंहिंमें प्यार ऐं पाबो थींदड़ असांजा दरिया हयातीअ खे जियापो बख़्शींदड़ उन अन दाणा उपाईंदड़ ही सुगंध भरी मिटी मौसम जा सभई रंग वरना रंग अहद करियूं त पंहिंजे महबूब वतन जी तरक़ी ऐं कामयाबी ऐं कामरानी लाइ ॾींहं राति जाखोड़ कयूं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाक आर्मी पाईंदाबाद।

साईं मुझा हकीकी इल्म इंसान के संदस तारीखी हैसियत जो शऊर दींदो आहे। उहो शऊर तनक़ीदी हूंदो आहे पर उन जो बुनियाद सवाल जवाब ऐं पुछागाछा ते मुश्तमिल हूंदो आहे। जीअं त उन जो बुनियाद हक़ीक़ी तारीख़ी हालतुनि ते पवंदो आहे, तंहिं करे उन शऊर वारो फर्द इज्तिमाही मुफ़ाद में तब्दीलीअ लाइ पंहिंजे चौधारी हक़ीक़ी माहौल सां वाबिसा थी उन खे समझंदो आहे ऐं उन मां हिकु नओं इल्म ऐं नओं शऊर पैदा कंदो आहे। उहा ॻाल्हि तय आहे त सिखण जी ख़्वाहिश ॿार में फितरी तौर ते मौजूद हूंदी आहे। उन ख़्वाहिश जो इज़हार हू तजसुस ऐं सवाल जी सूरत में कंदो आहे। अहिड़नि ई नंढड़नि ज़िननि खे जवाब सुठे नमूने सां ॾियणु घुर्जे ऐं असांजी उन्हनि नंढड़नि नौजवाननि खे असांजी इल्तिजा ई आहे त तालीम सां गॾु पंहिंजो पाकिस्तानी हुजणु ज़रूरी आहे, पंहिंजे मोहब वतन पाकिस्तान सां प्यार हुजणु ज़रूरी आहे ऐं असांजी सभिनी नौजवाननि खे इहा इल्तिजा आहे त पंहिंजो जेको आहे सो पाक आर्मी सां तालुक़ु रखनि, पाक आर्मी में भर्ती थियनि ऐं पंहिंजो जेको हिसो थियनि पाक आर्मी थियनि ऐं उन में पंहिंजे मुल्क ख़ातिर जेको आहे सो कोशिश कंदा रहनि ऐं मुल्क सां जो जज़्बो आहे, जुनून आहे, उहो उन में पंहिंजे नौजवान में हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। त समय असां जो जेको अॼोको प्रोग्राम आहे उहो मारकाए हक़ ऐं बनानी मरसूस जे नाले ते आहे। असांजो प्रोग्राम पाक फ़ौज जे नाले आहे ऐं पाक आर्मी नाले आहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

जी सभिनि प्रोग्राम रोशन सुबुह आमद पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं करे बि न वञिजो तव्हांजा नाला ज़रूर खणंदासीं ऐं हिन तरह पिया नंढड़े कमर्शियल ब्रेक

0: is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clinic aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.

जी असमें कुछ दोस्त नाला फेसबुक वारन जा असो भा नजीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान का प्रोग्राम बुधे पो सैद गुलाम दोस्त प्रोग्राम बुधन पा मुरीद अहमद थेबो सदाम खास केली जमील अहमद दिलावर वहाब खास केली भाईर की वही मेहरबानी गोठ रवल खान बुगटी खां एहसान अली बुगटी मोहम्मद खान कुंभार वफा जमाल कुंभार उमेद अली कुंभार हालेपुर स्टॉप मीरपुर खास खां भाईर की वही मेहरबानी ईदगाह जतोई बखर खां मोहम्मद हफीज रहमान हबीब मलक खलील मलक अली रहमान मुल्तान खां गुल यासमीन नाज वही मेहरबानी दोस्त गोठ पाबो वेरो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेंगवाड़ नवल राय सूरज गुल दानिश कुमार भाईर की शंकर लालबुन सा गड है भाईर की वही मेहरबानी लख कुर्ब समझा गोठ मोल डे माशी खां लगे वडन वरन खां जमीर सेन सोलंगी महिर अब्बास सोलंगी गोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली गुलाम रसूल कुंभर गोठ अहमद खान लाशारी खां न्याज अली लाशारी नंढड़ो शाहजेब लाशारी गोठ हसू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई गोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अहसन फहद अहद शादाब चांडियो गोठ छुटो मक्सी लग कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप सखर लग सब्जी मंडी खां एजाज अली जुणे जो मुनीब रहमान महेसर हरसाणन खां धोनी ही आखिरी नगमो पाकिस्तान नगमो दोस्तन जे नाम।

जीअं वतन पाकिस्तान सां मोहबत ईमान जो हिसो आहे, हर इंसान खे पंहिंजे वतन सां मोहबत हूंदी आहे ऐं उहो फितरी अमल आहे। इंसान जंहिं मिटीअ ते जनम वठे थो, उहा मिटी उन जी माउ जो रुतबो रखे थी ऐं हर पंहिंजे माउ सां लाज़वाल मोहबत कंदो आहे। असां जॾहिं पंहिंजे वतन जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, तॾहिं वतन जी मिटीअ जी खुशबू असांजे मन खे मोतर करे छॾींदी आहे। छो त ज़िंदगीअ जो नाम, ज़िंदगीअ जो रुतबो, मान ऐं शान वतन जी धरतीअ सां ई हूंदो आहे। ऐं साईं जा त चवंदा आहिनि त हाइफ़ तनी खे होए वतन जन वसा।

0: शहरो नौ शहरो मीरपुर खास लाड़काना
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: जंगबंदी माहिते जे भंकड़ी जा इल्ज़ाम अमरीका बनाए हुर्मुज में ॿ ईरानी सामुंडी जहाज तबाह करे छॾिया। ईरानी बेटन ते बि शदीद बमबारी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मूजिबि अमरीकी फ़ौज फुजरा ऐं जासम में ईरानी बहरी खे निशानो बणायो ऐं खुमेर ऐं सरक कुसम ऐं बंदर अब्बास गाह ते बंदरगाह ते हमला कया। ॾखण में अमरीकी जहाज़नि खे निशानो बणायो। सेंटकॉम जो चवणु आहे त ईरान नंढनि ॿिन्हिनि ते हमिलो कयो। जवाबी कार्रवाई तौर ते उन्हनि हंधनि खे निशानो बणायो जितां हमिलो कयो वियो। अमरीकी फ़ौजी असासनि खे को बि नुक़सान न आहे पए थो। उहा मुख़्तसिर कार्रवाई हुई जेका मुकमल थी वई आहे। उन सां सीज़फायर मुआदे ते फ़र्क़ न पवंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान जे सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनेई सां मुलाक़ात। मसूद पज़ेशकियान चयो त आयतुल्लाह मुश्तफा खामनेई सां मुलाक़ात एतमाद आजिज़ी ऐं पुरखलूस माहौल में थी। आला तरीन अथार्टी जी आजिज़ी ऐं इख़लाक़ी वर्ताउ मुल्क जे इंतज़ामी मिसाल लाइ आहे। ईरान ते हमले खां पोइ दुश्मन जो ख़्यालु हो त माण्हू रोडनि ते अची वेंदा। दुश्मन हुन करे सिक्योरिटी ऐं फ़ौजी मर्कज़नि खे निशानो बणायो। दुश्मन ईरान खे टुकड़ा टुकड़ा करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। मुश्तफा खामनेई पंहिंजे हिकु बयान में चयो आहे त एटमी मामले ते ॻाल्हियूं न थींदियूं। आमने हुर्मुज जो कंट्रोल बि ईरान वटि ई रहणु घुर्जे। गैर मुल्की फ़ौज अमरीकी हुजे या यूरोपी खिते मां निकिरी वञे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची जो नायब वज़ीर आज़म एहसान डार सां फ़ोन ते राब्तो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई मूजिबि ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि खे जे हाणोकी सूरताल ते ख़्याल जी ॾेवट कई। इस्तक़ाम बरक़रार रखण ऐं शिकताल घटाइण लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी वारे अमल जारी रखण ते ज़ोर पियो।

0: भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ दहशतगर्द तंज़ीमुनि खे फंडिंग करे रहियो आहे। भारत सां मौजूदा शक्तिताण कंहिं बि वक़्तु वधीक तकरार जो सबबु बणिजी सघे थी। ॿिन्ही मुल्कनि खे अमुन ख़ातिर ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो फ्रांसी टीवी खे इंटरव्यू। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त आबदा हुर्मुज़ वारे मसइले जो को बि फ़ौजी हल न आहे। ईरान अमरीका जंग ॿीहर शुरू थी त हुन जा असर महदूद न हूंदा। समूरी दुनिया खे हिन तकरार जा नतीजा भोगणा पवंदा।
1: वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आजम ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेस विच वी ईच एंड एवरीवन नो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, वी हैव रीस्टैब्लिश, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की मिनटों में की। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था?
0: अल्लाह जे फजल सां कवारी जंग में पाण खां वॾे दुश्मन खे हर महाज ते बरदनाक शिकस्त ॾिनी। पाकिस्तान जी सलामती ऐं ख़ुद मुख़्तियारी जो हर क़ीमत ते दिफ़ा कयो वेंदो। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पाकिस्तान ऐं फील्ड मार्शल ॾींहुं राति भारत जे ख़्वाब में ईंदा आहिनि। वालियारनि कश्मीर भारत जो हिसो न पर आलमी सतह ते मंझंदि तकरारी इलाइक़ो आहे। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलवस आहे। पाक फ़ौज पहिरीं बि तयारु हुई, हाणे बि तयारु आहे। हीउ सिंदूर खां ॿाहिरि छो नथा निकिरनि? सिंदूर त औरतुनि खे लॻायो वेंदो आहे। कंहिंखे आज़माइणो आहे त तयारु आहियो। चौधरी चयो आहे त 14 अगस्त ते ताक़त जो नंढो हिसो आवाम खे ॾेखारे वेंदो। असां रियासत पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज आहियूं, कंहिं बि सियासी सोच जी नुमाइंदगी नथा कयूं। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त पाक फ़ौज इलीट जी न पर ग़रीब जी फ़ौज आहे। सिंतास मुआदे जी कंहिंखे बि भञकड़ी करणु न ॾींदासीं। छह दरियानि ते सिर्फ़ पाकिस्तान जो हक़ आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।

ठीकु आहे, हर माण्हू जो हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो अलॻि अलॻि नज़रियो हूंदो आहे, त सभ खां पहिरियां त आहे त तालीमी शऊर पैदा कजे ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जी तादाद उहा तमामु घणी कराइजे, ऐं हक़ ऐं जेके फर्ज़ सुञाणनि था न माण्हू उन्हनि जी तरबियत कजे ऐं उन्हनि खे अॻिते आणजे, ऐं उन करे ॿारनि जेके आहिनि असांजी जेका यंग जनरेशन आहे, जेका असांजा मुस्तक़बिल जा मेमार आहिनि, ऐं जेके असांजे मुल्क जूं वागुजनि जे हथनि में हूंदियूं, असांजी वागुजनि जे हथनि में हूंदियूं, त उन्हनि ॿारनि खे तालीम ज़रूरु ॾिजे। ॿियो आहे माण्हुनि सां इज़त मोहबत ऐं बर्दाश्त सां पेश अचिजे। सुठो इख़लाक समाज खे पुरअमन बणाईंदो अथव। ग़रीब ऐं अमीर नंढे ऐं वॾे सां हिकु जहिड़ो वर्ताव थियणु घुर्जे। इंसाफ़ सां समाज मज़बूत थींदो आहे। कानून जी पासदारीअ सां बदअमनी, करप्शन ऐं ॾोहनि में घटिताई ईंदी आहे। हुन जे लाइ कानून जी पासदारी बि ज़रूरी आहे। औरतुनि खे तालीम, इज़त ऐं बराबरीअ जा हक़ ॾियणु घुर्जनि ऐं नौजवान क़ौम जो मुस्तक़बिल आहिनि, उन्हनि खे मुस्बत सरगर्मियुनि, इल्म ऐं सुठनि क़दरनि ॾांहुं आणणु ज़रूरी आहे। साफ़ सुथरो माहौल सिहतमंद समाज जी निशानी आहे। वण पोखण ऐं गंदगीअ खां बचणु ज़रूरी आहे। सुखे वक़्त सां गॾु ॾाढी अहम पॉइंट अथव। सुखे वक़्त सां गॾु ॾुखे वक़्त में बि माण्हुनि जो साथ ॾियणु घुर्जे, छो त गॾियल सहकार सां ई समाज मज़बूत थिए थो। इहो ई चई सघंदो आख़िर में त समाज में सुधारो कंहिं हिकु माण्हूअ सां न पर सभिनी जो ई गॾियल कोशिश सां ईंदो आहे। जेकॾहिं हर माण्हू पंहिंजे किरदार खे बहितर बणाए त समाज पाण मुरादो सुधरी सघे।

प्रोग्राम के आगाज में आबदा प्रवीण एक खूबसूरत ट्रेक है मुझे प्ले लिस्ट में उन्हें गडो कर तुझाई तुम प्रोग्राम में शामिल बजरिया एसएमएस करने तरीकेकार सहलो है असान मोबाइल फोन राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एमआरओ लिखो स्पेस स्पेस लिखो नालो पांच घोटे शहर जो नालो लिखी कर मोकलो असान 888

अहमद मुगल जी खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजी सुंदर समा तूं मां रुगो तो ॾे ॾिसां तूं रुगो मूं ॾे ॾिसी दिलि चवे थी ओ पिरी तूं मुंहिंजे साम्हूं हुजे शामिल थी सघो था तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो एम आर ओ लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते त मुंहिंजा मिठा साईं किस्मत इंसान जी ज़िंदगी जो हिकु अहम तसवुरु हूंदो अथव जंहिंखे तकदीर बि चयो वेंदो आहे उन खां अलावा हिन जा खोड़ ॿिया बि नाला अथव जीअं चऊं त नसीब या भाग हर इंसान जी दिलि में उहो सवाल ज़रूर हूंदो आहे त ज़िंदगी में जेके वाकिया थियनि था न उहे अॻुवाट लिखियल आहिनि या इंसान पाण पंहिंजी क़िस्मत सां पंहिंजी क़िस्मत बदलाए सघे थो। क़िस्मत बाबति मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ ख़्याल आहिनि पर सच उहो आहे त क़िस्मत ऐं महिनत ॿिन्ही जो पाण में गहरो लाॻापो अथव। कुझु माण्हू समझंदा आहिनि त हर शइ क़िस्मत में अॻुवाट लिखियलु आहे तंहिं करे इंसान खे घणी महिनत करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। अहिड़ी सोच इंसान खे सुस्त बि करे छॾींदी अथव। जेकॾहिं को शागिर्दु पढ़ाई नथो करे चवे थो त जेकॾहिं क़िस्मत में हूंदो त पास थी वेंदुसि त इहा ज़ाहिर इहा ग़लति सोच आहे न। ऐं क़िस्मत ते भरोसो करणु सुठो अमल आहे पर बग़ैर महिनत जे कामयाबी हासिल करणु सफ़ा नामुमकिन अथव। ॿिए तरफ़ वरी कुझु माण्हू पंहिंजी महिनत ते मुकमल भरोसो कनि था ऐं क़िस्मत खे नज़रअंदाज़ कनि था पर हक़ीक़त में इंसान जी महिनत सां गॾु क़िस्मत जो बि किरदारु ज़रूरु हूंदो आहे। पर कॾहिं कॾहिं इंसान तमामु घणी महिनत करे थो पर नतीजो संदसि मर्ज़ीअ मुताबिक़ नथो मिले उन मां ज़ाहिर थिए थो त क़िस्मत बि पंहिंजो असर ॾेखारे रही आहे। असल में कामयाबी जे लाइ महिनत लगन ऐं दुआ सां गॾु क़िस्मत ते बि ईमान रखणु ज़रूरी आहे। जीअं चयो वेंदो आहे त महिनत कंदड़ जी मदद क़िस्मत बि करे थी। यानी जेको इंसान सचाई ऐं ईमानदारी सां महिनत करे वेठो न उन लाइ क़िस्मत जा दरवाज़ा बि खुली वञनि था। त हुन जे करे असांखे घुर्जे त क़िस्मत खे इल्ज़ाम ॾियण बदिरां पंहिंजे कम ते ध्यानु ॾियूं। नाकामीअ खे क़िस्मत जो ॾोह ॾियण आसान आहे पर पंहिंजी ग़लतीअ खे समझण ऐं उन खे दुरुस्त करण वॾी अहमियत जी ॻाल्हि आहे। हिकु मज़बूत इरादो ऐं मुसलसल महिनत इंसान खे संदसि मंज़िल ताईं पहुचाए सघे थी।

0: मेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: इन वक्त मौजूद आहिनि त हलूं था मैसेजनि जी तरफ़।

असांजे प्रोग्राम में हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे महबूब अली मल्ला, अब्दुल कदीर मल्ला ऐं अब्दुल समद मल्ला। आज़म सिटी सकरन खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया ऐं नूर जहां जे कलाम जी अदाजन फरमाइश कई आहे। हाज़िर मुंहिंजा भाउ, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, कोशिश कंदासीं, छो जो पसंदि हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू पंहिंजी पंहिंजी पसंदि मोकिलींदा आहिनि। असां कोशिश कंदा आहियूं त सभिनी जी जेके बि असांखे प्यारा मैसेज कनि था उन्हनि जी असां पसंदि जा सॉन्ग हलायूं, पर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थी वेंदो अथव त टाइम असां वटि थोरो हूंदो आहे ऐं माण्हुनि जी चॉइस वधीक हूंदी आहे, उन्हनि जे पसंदीदा गाननि जी तादाद वधीक हूंदी आहे, पोइ उन जे करे उहे रहिजी वेंदा आहिनि। मैडम नूरजहां पाकिस्तान जी तमामु वॾी गायणी आहे, इनशाला ताला उन जो सॉन्ग असां पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल कंदासीं। ऐं अदो आहे, चवे थो, अदा वॾी महिरबानी मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॿुधाइण ते, त मुंहिंजा मिठा महिरबानी अदा, नालो तव्हां पंहिंजो कोन लिखियो आहे, बरहाल तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। दादू खां इमदाद जतोई अब्दुल ख़ालिक जतोई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, मुबशर हुसैन जतोई हुन सां गॾु आहे ऐं किफ़ायत उल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई ऐं जलाल चांडी जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि, त जलाल चांडी जी ही कलाम जी ईअं सम्झो त ॿी फरमाइश आहे, त भाउ मुंहिंजा ज़रूर जलाल चांडे खे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। ऐं ग़ुलाम फारूक, शकील, ख़लील, सबीन, अकील, अतीक, मुकीम, सुलेमान गोठ, मेहर, हाजी, राजपुर खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहिनि। अदा साईं महिरबानी तव्हांजूं, स्पेशली मां ग़ुलाम फारूक समेत जेके बि माण्हू आहिनि, जेके तव्हां मैसेज में जंहिं जा नाला लिखिया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। दादू खां इमदाद जतोई भाजन जो ही ॿियो मैसेज, जंहिं सां गॾु अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफ़ायत उल्ला जतोई आहे ऐं फारूक हैदर जतोई आहे, त मुंहिंजा मिठा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, मुंहिंजी तरफ़ खां खोड़ दफ़ा तव्हांखे भलीकार।

0: टेंशन छोड़ो, सुनो GFM 88 मोरो।
1: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GFM 88 की सरमस्त आवाज से।
2: तो डालो धमाल और बोलो
1: GFM 88
2: सिंध की आवाज।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: छा अहां जो चेहरो बेजान ए डल लगे थो? हाणे वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम ए रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
5: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
4: DHMS सिंध,
5: RHMP इस्लामाबाद,
4: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
5: माहिरे अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
4: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
5: कमर दर्द,
4: अर्कुन निसा,
5: जोड़ों का दर्द,
4: हेपेटाइटिस,
5: वजन की कमी या ज्यादती,
4: बे औलादी,
5: गंजपन का मुकम्मल इलाज
4: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
5: टाइम
4: हफ्ते से जुमेरात
5: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
4: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
5: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
4: राब्ते के लिए
5: 03262200440।
1: GA सखर FM 88
2: सखर की आवाज़।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाउरनि भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती जे आख़िरी लम्हनि में बि भली कारा सां चऊं था त मुंहिंजा मिठा सिंह प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी हिकु वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो आहे ऐं हिन प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ में तव्हां सां हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं ऐं तव्हां पारां मोकिलियल प्यारा प्यारा मैसेजेस।

मुझे बेटा सही प्रोग्राम में दोस्तों जो मैसेजेस भी शामिल कंदा हलो गड गड इन सा असन जे प्रोग्राम इन वक्त असन कदा है कुर्बान अली देपर ए मोहम्मद आचर देपर सावण खान हाली पोटरो डेडिकेट कदा अब्दुल जब्बार चन्ना के चवंदा सोडल फकीर जी आवाज में असके कलाम मुतरायो तो हाजिर मुझे मिठा सही सोडल फकीर जो ताल्लुक मोरो शहर सा रहो है मोरो जे बराड़ी सा रहो है सिंध जो तमाम वडो फनकार है रहो है अल्लाह ताला उनके जन्नत में जगह दिए जरूर अदा अगर टाइम बचो तो सोडल फकीर की आवाज में जरूर कलाम बुधाई अगर न तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो होंद न उन में तवे जरूर सोडल फकीर की आवाज में कलाम बुधाई तो असा गड है दादू का इमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई किफायतुल्ला जतोई पांच प्रोग्राम बुझी रो है तो उन्होंने भी असे प्रोग्राम में स्पेशली भलीकार चूं था उनके अलावा गुलाम फारूक शकील खलीक असा गड है अकील मुकीम सुलेमान गोठ मेहर हाजी राजप्रकाश मेहरबानी प्यारा तमासन प्रोग्राम में शामिल था लख कुर्ब लख एहसान तवाजा।

मारवी सिंधु जे खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजी सुंदर समातू त मुंहिंजा मिठा सिंह प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुचण वारो आहे ऐं प्रोग्राम जे पुॼाणीअ ते हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदा आहियूं त पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो ऐं उन खां अलावा पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, दोस्तनि जो मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। त मुंहिंजा मिठा साईं, हमेशह ॿियनि जी तकलीफ़ खे पंहिंजी तकलीफ़ सम्झो ऐं पंहिंजे वस ऐं वित आहार जेके माण्हू आहिनि असांजे मुआशिरे में जेके तव्हां महसूस कयो था त उन्हनि खे सख़्त ज़रूरत मंद माण्हू आहिनि, उन्हनि जी पंहिंजे वस ऐं वित आहार मदद ज़रूर कंदा कयो। इनशाला ताला हयाती रही त वरी ॿियो प्रोग्राम ई तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ ॾींदा पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे इजाज़त।

पाकिस्तान जे भरपूर जवाब बाद भारत चइनि कलाकनि में शिकस्त तस्लीम कई। सॼी दुनिया पाकिस्तान जी कामयाबी ऐं भारत जी शिकस्त जी शाहिदी ॾेई रही आहे। टनो बमुथान में औरत ऐं मासूम ॿारनि समेत फुलेली किनाल में ठपो ॾेई आबघात करे छॾियो। औरत ऐं ॿारनि जा लाश हथे सुञाणप नाहे थी सघी। वाकिए जी जाच नौशहर फिरोज जी अदालत में लंजार हाउस खे ॿाहिरि ॾियण समेत अठ केसिस जूं ॿुधणियूं। अॻूणो वफ़ाकी वज़ीर गुलाम मतदा जतोई ऐं संदन भाउ मसरूर जतोई अदालत में पेश। ATC में करे छॾियो। राधण भरिसां विरोही ऐं सोलंकी बिरादरी जी विंदड़ में तकरारनि में ज़ख़्मी थियल नौजवान फौज ज़ख़्मी राबेल जो नंढो लाड़काणो जी अस्पताल में ज़ख़्मनि जी सट न सहंदे दम ॾेई छॾियो। हक वारी जंग में कामयाबी खे साल मुकमल थियण ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में ॿिए ॾींहं बि रैलीज़ कैप में सेप्को मुलाज़मनि पारां बाबदा आफ़िस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। कंदकोट में DC आफ़िस खां घंटाघर ताईं रैली, शहरनि जी शिरकत। सखर में बि रैली कढी वई। उस्तादनि शागिर्दनि ऐं शहरनि जी शिरकत। नवदर में स्कूल जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां रैली।

0: पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो।

0: मेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: से रूस पारा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीप के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीप के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीप से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक कलबीप, रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फादिया एक और पहचान
0: डी ए एफ एम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर रिटर्न्स पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल अबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल अबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अल अबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।

ट्रेंड के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

क्या देख कम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिट के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और क्या समझे।

0: से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 120 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: सुनिए

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो.
1: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 4:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ

0: आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता 16 मार्च से हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो
1: डकम बैंक करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
2: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो आन रोजानो सुबह 5 मिनट सिर्फ GFM।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 5 PM. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: ईरान ऐं अमरीका जो हिकु बेहतर जंगबंदीअ जी वजगड़ियुनि जो इल्ज़ाम। अमरीकी फ़ौज कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते हमलनि जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी फ़ौज जो बि भरपूर जवाब। अमरीकी बहरी जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सेंटकॉम पारां जारी कयल बयान में चयो आहे त कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते ॿिनि हंधनि खे निशानो बणायो आहे। हमलनि जो मक़सदु ईरान सां ॿीहर जंग शुरू करणु नाहे। अमरीकी जहाज़नि ते हमलनि बाद ईरान ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कई आहे। ईरान जे ख़ातम ओलंपिया हेडक्वार्टर्स मूजिब ईरानी फ़ौज अमरीकी हमलनि जो जवाब ॾिनो आहे। अबनाह हुर्मुज़ जे ओभर ऐं चाबहार बंदरगाह वेझो अमरीकी फ़ौज ॿेड़नि खे निशानो बणायो वियो, जिन सां खेनि घणो नुक़सान पहुतो आहे।
1: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
2: Could you give us an update on what is the latest in
1: the
2: talks?
1: No, the talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas. Or you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it.
0: झड़पनि ऐं हमलनि बावजूद ईरान सां जंगबंदी बरक़रार आहे। तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। वाइदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी बेड़ा अबनाह हुर्मुज़ पार करे विया आहिनि। जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो। ट्रम्प जे हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर जीवा खान। सदर ट्रम्प चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो।
1: Because the really wonderful leadership at place, as you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
0: सिफारती हल मेज़ ते ईंदो आहे त अमरीका गैर ज़िमेवारो फ़ौजी एडवेंचर कंदो आहे। सबब जेके बि हुजनि, ईरानी क़ौम कंहिं बि दबाउ तोड़ी धमकीअ नालो न चुकंदी। तेहरान शहरियुनि जे दिफ़ा लाइ हज़ार सैकड़ो तयार आहे। समाजी वेबसाइट एक्स ते जारी कयल बयान में ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त ईरान जे मिज़ाइल प्रोग्राम बाबति

वापसी लाइ सहकार करण जी दरख्वास्त। इसहाक डार चयो त मामले ते ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखजी सां बि राब्ते में आहियां। पाकिस्तान ईरान शहरियुनि जी महफ़ूज़ वापसीअ लाइ सहूलियत फराहम करण लाइ तयार आहे। अमरीका पारां ज़ब्त कयल ईरानी ॿेड़नि ते 11 पाकिस्तानी ऐं 20 ईरानी शहरी मौजूद आहिनि।

0: कदमनि सां मुमकिन नाहे। तकरार जो ख़ात्मो ऐं फ़ौजी कार्रवाइयूं रोकणु ज़रूरी आहिनि। ठिकताण वधाइण वारनि कदमनि खां पासो कयो वञे। चीन आबना हुर्मुस में चीनी बहरी बेड़े ते हमले जी तस्दीक करे छदी। चीनी परडेही वज़ारत मूजिब तेल सां भरियल चीनी बहरी बेड़े खे निशानो बणायो वियो आहे। बेड़े ते चीनी अमलो सवार हुयो। अमले जे जख़्मी थियण जा इतला नाहिनि मिलिया। मामले खे वधीक ॾिसी रहिया आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
6: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
7: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

के तो मत जाइएगा, क्योंकि 5 से 7 तक मैं आपके साथ रहता हूँ एवरी फ्राइडे। और आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी पेज आइए, वहाँ पर जनाब आप मुझे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और मेरी मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और जनाब अपने मैसेजेस में आप किसी को कोई डेडिकेशन भी कर सकते हैं, कोई शेर शायरी लिख सकते हैं, कोई लतीफा भी लिख सकते हैं। और जनाब बता सकते हैं कि गर्मी किन किन तरीकों से कम होती है, क्योंकि जनाब इस वक्त जो सबसे ज्यादा नीड है हमारी आवाम को, हम सबको, हम चाहते हैं कि जनाब गर्मी कम हो जाए। और उसके बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आप दाना हैं, आप अकले कुल हैं, तो हमें बताइए कि आपके पास गर्मी कम करने के लिए कौन कौन से नुस्खे हैं, जरूर बताइएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब 03000113488, यानी कि 03000113488। ये नंबर मुझे कभी याद नहीं होता, मैं हमेशा देख के पढ़ता होता हूँ। है जनाब, आज हम ये भी बताते चलें कि आज 8 मई 2026 है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसमिया का जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि खून की बीमारी थैलेसमिया के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान थैलेसमिया सेंटर के मुताबिक मुल्क में हर साल थैलेसमिया का शिकार 5000 बच्चों की पैदाइश होती है। माहिरीन के मुताबिक ये मौलिक बीमारी जो है खून की बीमारी है और ये मर्ज जो होता है अनफॉर्चुनेटली वालदैन से बच्चों को मिलता है, मूर्सी मर्ज है और ये बस खून के खुलियों की गैर मामूली हरकत की अलामत है जिसके बाद खून बनने का अमल रुक जाता है। यही वजह है कि मरीजों को बार बार खून की जरूरत पड़ती है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर खून का अतिया देना चाहते हैं तो अपने करीबी जनाब ब्लड बैंक में जाकर थैलेसमिया के बच्चों को जिंदगी बचाने के लिए आप खून का अतिया कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सदका जारी है, आपके लिए सवाब का काम है। हमारे साथ मैसेज में बहुत से लोग आना शुरू हो चुके हैं। पान सद्दीकी हमारे साथ हैं। अशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज यार न्यू पिंड में पानी का मसला है, हल करवा दो आपका। आप हुक्म से दरख्वास्त करें, आप हुकाम से दरख्वास्त करें और उन्हें आगाह करें, उन्हें टैग भी करें। तो जनाब मेरी तमाम हुकाम से आला आला आला हुकाम से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज प्लीज ना सिर्फ न्यू पिंड बल्कि जहां कहीं पर भी पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, साफ पानी की किल्लत है, वहां पर प्लीज प्लीज प्लीज ये मसला हल करवाएं, क्योंकि गर्मियों में कैसे गुजारा होता है ये तो बेचारी गरीब आवाम जानती है। जहां तक पानी नहीं पहुंच रहा, ना इस्तेमाल के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। और जनाब बिजली वालों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आपदा वाले हुकाम से, कि प्लीज यार बिजली की लोड शेडिंग कम कर दो, खुदा का वास्ता है। हर किसी के घर में एसी नहीं है, हर किसी के घर में मतलब फैसिलिटीज नहीं है। जो बेचारे तंग घरों में रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं, उनको बिजली की अशद जरूरत होती है। और गर्मियों में तो खुदा के लिए थोड़ा सा रहम कर दिया करो, ताकि बेचारे गरीब तो सुख का सांस ले सकें। और हाथ बांध की गुजारिश है आप तमाम लोगों से, आला हुकाम से, कि पानी और बिजली का मसला प्लीज हल कर दें, ताकि ये बेसिक सहूलतें जो हमारी आवाम को मिल जाएं और वो आपको बहुत सारी दुआएं दें, वरना तो फिर आपको पता ही है। आपका अपना अशफाक आपके साथ है, 5 to 7 हमारा और आपका साथ रहेगा। या जो तो ये ऑफिशियल से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई, केड़ा हाल है, खुश आए हो, सखर जन्नतुल फिरदौस हमें याद करवाती गर्मी आप, नो कमिट्स अबाउट जन्नतुल फिरदौस। और जनाब गर्मी तो इलाही है, भले सखर हो जाए, कराची हो जाए, हैदराबाद, हैदराबाद में सुठो मौसम है, मुझे दोस्त भी पे वाला अब्बास सच्चे तो मौसम इलाही सुठो आप, बहरहाल सखर में भी सुठो हो, 3-4 ॾींहं थे इलाही गर्मी पई है, गर्मी के पद में इजाफो थो है, हाँ ईंदड़ ॾींहनि में भी गर्मी जरूर पवंदी, छो त गर्मी जो सीजन आहे त गर्मी भी पवंदी। अब्बास मलिक इज वॉचिंग, थैंक यू अब्बास। सैयद मज़हर हुसैन शाह इज वॉचिंग, थैंक यू सैयद मज़हर बादशाह। अब्बास मलिक कहते हैं सर सलाम, वालेकुम अस्सलाम अब्बास, ये बताओ मौसम कैसा हैदराबाद का और कैसे हो डियर ब्रदर? आई एम वेरी फाइन। और आज दरअसल मैंने ना फेसबुक पे आने के लिए माइक सॉरी हेडफोन नहीं लगाया, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि यार मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा सा ही लगा लेता हूँ और जो है देखता हूँ कि मुझे मेरी आवाज कैसे लग रही है। आप लोग कैसे हैं भाई? और सैयद मज़हर हुसैन शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मज़हर भाई, हाँ अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है ना। और नूर मोहम्मद गिरानी साहब कहते हैं हेलो, कैसे अशफाक भाई? आई एम फाइन नूर मोहम्मद गिरानी साहब, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में, जबरदस्त है। अरे जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, आप हमें कॉल शॉल कर सकते हैं बिल्कुल जनाब, और ये नंबर डायल कीजिए ताकि आप हमसे गपशप कर सकें। खैर जनाब आप के मैसेजेस भी मैं शामिल शो कर रहा हूं, आपके साथ बातचीत भी हो रही है, तो जनाब हम क्या करें कि जनाब अब आपको बताते हैं थोड़ा सा थैलेसमिया के हवाले से, थोड़ी सी अवेयरनेस भी देते चलें कि यार ये जो थैलेसमिया होता है बहुत मुझी मर्ज होता है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि सखर में और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो कैंप्स लगाए हुए होते हैं थैलेसमिया के बच्चों के लिए, कि उनके लिए जो आप लोग हैं ना वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा एफर्ट्स लें और जनाब उनके लिए आप खून अतिया करें। तो प्लीज आप लोग उनके लिए खून जरूर अतिया करें, ताकि जो है आप लोग
क्या कहते हैं कि उनके लिए खून अतिया करेंगे, तो ये सवाब का बहुत ज्यादा काम होता है और आपको सवाब मिलेगा और आपकी आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी कि जनाब देखिए हमने एक अच्छे कॉज के लिए अपना खून अतिया किया है। अब्बास मलिक कहते हैं डियर ब्रदर हमारे सखर से काफी कम है गर्मी वहां हैदराबाद में, क्या बात है, गुड है जनाब, अच्छी बात है। और अगर आप किसी भी शहर से मुझे देख रहे हैं, किसी भी मुल्क से मुझे देख रहे हैं, तो बताइए कि आपके शहर में और आपके मुल्क में कितनी गर्मी पड़ रही है और कितना ठंड प्रोग्राम वहां पर पड़ रहा है, जरूर मुझे बताइएगा। इमदादुल्ला खुशो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और प्लीज मुझे कोई कॉल ना करे क्योंकि मेरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत से लोग मुझे सब कॉल कर रहे हैं मोबाइल पे, तो प्लीज डोंट कॉल मी, ओके? तो मुझे कॉल ना क्यों जाता, मुझे लाइव डिस्टर्ब थी मेरे। तो है जनाब 5:19 हुआ चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें और बहुत सारी डिस्कशन आपके साथ होती रहेंगी। तो साथ इस गर्मी को भी इंजॉय करें, इस बढ़ती महंगाई को भी इंजॉय करें, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को भी इंजॉय करें, सोने की हाई फाई कीमतों को भी इंजॉय करें, क्योंकि जनाब जब हम फील करेंगे तो मैंने पहले कहा कि वो फील चीजें होंगी, अगर हम फील नहीं करेंगे तो हम चिल प्रोग्राम करेंगे। खैर जनाब अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई गाना वाना चला दूं, तो आपकी फरमाइश सर आंखों पर, आपकी फरमाइश सुनिए, खैर मैं अपनी फरमाइश से चला रहा हूं, आपको ये गाना वैसे सुनना पड़ेगा। तो गाना वाना कौन सा चलाएं जनाब, अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि मैं आज मेरी फरमाइश को मुझे मिली नहीं थी। एनीवे तो आप

गाना निक्का जया ढोला, तो आप इस गाने को सुनिएगा और सुनते रहिएगा। आपका अपना अशफाक नियाज़ी आपके साथ मौजूद है, तो

0: Hello. Assalamu alaikum.
1: Hello.
0: Assalamu alaikum.
1: Hello. Assalamu alaikum.
0: Waalaikum assalam.
1: Waalaikum assalam.
0: जी कौन हमारे साथ मेरे साथ कौन है इस वक्त?
1: हेलो
0: हेलो आवाज आ रही है
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद।

0: वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: कैसे मेरे भाई
1: जी। कौन हमारे साथ कौन है इस वक्त?
0: हेलो
1: हेलो, आवाज आ रही है? हैदराबाद में है, कैसे छुट्टियां जा रही हैं आपकी?
0: बहुत अच्छी जा रही है सर, बहुत अच्छा मौसम है हमारे चक्कर ज्यादा मौसम चेंज है।
1: वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। तो आप खैरियत से गए हैं हैदराबाद?
0: हाँ, अर्जेंट थोड़ा काम हो गया था।
1: वाह वाह,
0: आ गए और अभी हैदराबाद में।
1: अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बताओ कि खैर हैदराबाद में एंजॉय कर रहे हो?
0: हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, पसीना वसीना नहीं आ रहा हमारे यहाँ चक्कर में, तो पसीना सूखता नहीं रहा अभी रात चक्कर
1: यार। यहाँ पे मत पूछो इतना पसीना आ रहा है, यकीन करो मेरे तो पसीने वैसे भी सर्दियों में भी नहीं सूखते और गर्मियां आती तो तबाही हो जाती है।
0: सर हाँ, वही तो अभी बताया भी है कि दो तीन दिन और भी गर्मी की लहर रहेगी।
1: मरी भी आसे अगर कुछ नहीं हलंदी तो मरी भी दासे बा हाँ कौन बचदा से। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहते हैं आज थैलेसीमिया?
0: काफी टाइम के बाद आप लाइव आए हैं।
1: काफी टाइम के बाद मैं लाइव आया हूँ। एक्चुअली बहुत से लोगों का पुरजोर इसरार था कि लाइव आओ। सो गाइस, आज मैं लाइव आ गया। असल में फेसबुक की जो है प्राइवेसी की वजह से हम लोग नहीं आ पाते, क्योंकि फेसबुक जो है वो डिलीट करवा देता है जो है ये वीडियोज, तो इसलिए फिर थोड़ा मसला हो जाता है।
0: एग्जैक्टली। बहुत खुशी आपसे बात करके, अपने पसंद का कोई सॉन्ग सुना दें।
1: चले थे ना,
0: लाइव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी पसंद का सॉन्ग आपको सुनवाता हूँ। आप जान रहे हैं, खुश रहें और सब लोगों को मेरा सलाम दीजिएगा जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।
1: चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच।
1: अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, कहते हैं लिस्टिंग यू आफ्टर 5 ईयर्स। क्या बात है जनाब, आप हमारे साथ 5 साल के बाद हमारे साथ आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जनाब आप हमारे साथ हैं। गजनफर कहते हैं आज आ जाओ गुलामुल्ला जमाली के पास। बिल्कुल जनाब, मुझे उसकी कॉल का वेट है तो मैं ठड़क से आ जाऊंगा उसकी कॉल आएगी तो। और पठान पटके वाले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं पठान साहब? आप भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर जो हैं वो हमारे लिसनर हैं, तो आप हमारे साथ रही, हमारे साथ को छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। वेल राजेश राज हैं, कहते हैं माशाल्लाह तमाम बेहतरीन प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू सो मच राजेश भाई, आप भी बहुत अरसे बाद आए हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। खिजर यादवानी भाई हमें देख रहे हैं, पठान खान पटके वाले हमारे साथ अगेन है इतने सारे फूलों के साथ, क्या बात है। खिजर यार भाई कहते हैं हाई ब्रो, हाई खिजर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। प्रिंस महर भाई हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अरसे के बाद, कहते हैं हाई वीरू, हाई माई लव, और आप कैसे हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, मजे में हैं। थैंक यू ब्रो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पे। हम चलते हैं जनाब इस वक्त आई थिंक टाइम चेक का टाइम हुआ जाता है, सो हम टाइम चेक पे चलते हैं, उसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
2: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Amma, hey, do you want to
5: chaa milia? Chaa milia, putra?

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तनि खां बचाउ। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। साइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस, इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अर्निंग में इजाफा कर सको था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: निसार
0: अहमद पिताफी साहब केड़ा हाल चाल अव
1: खैर साईं तव्हां पंहिंजो हाल ॿुधायो
0: फर्स्ट क्लास मज़े में छा कंदो आहे मुंहिंजो भाउ निसार
1: साईं राखी पोखी जो
0: माशाल्लाह कीअं हले थी तव्हांजी राखी पोखी
1: साईं तमामु बस कमड़ी हले थो
0: अच्छा कमड़ी हले थो सही सही सही अलाह साईं तव्हांजे कारोबार में बरकत रहे इहो ॿुधायो गर्मा गर्मी जो हाल ॾियो यार पंहिंजे ॻोठ में
1: गर्मी से आए आज हुई से
0: अज टे चार ही थिया न बच इते त सफा क्यामत लगी पई आ
1: जी से हां ने दप आए जी
0: हां अल्लाह कंदो त ढरी थी या गर्मी आई थोड़ो मौसम सुठो थिंदो। अच्छा यो बताओ गानो तो हलाया आदि ज़ैनब जी फरमाइश से कहे जे नाल था करना चाहो
1: गदन जे पप्पू पिता भी जे
0: सिर्फ पप्पू पिता भी जे
1: उसा दानो गदन भी आ
0: अच्छा अच्छा अच्छा बेओ
1: वकार पिता भी सतार पिता भी
0: वाह वाह वाह गुड दिमाग ते जोर दियो मतलब या भी निकरन जेका ॿुधनि था उन्हनि सभिनी जे नाले हा न थैंक यू निसार भाई थैंक यू सो मच। हमारे साथ निसार भाई और जनाब निसार भाई के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे कॉल जनाब लेते हैं शो की एक और। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारा भाई केर असा सभिनी सां गॾु गॾु
2: बिल्कुल सही मां रासन पियो ॻाल्हायां थैंक यू आखो तव्हां बाबा शेख पियो ॻाल्हायो
0: न मां अशफाक न्याज़ी थो ॻाल्हायां।
2: अच्छा किथो रेडियो स्टेशन
0: जी जी बिल्कुल तव्हां वापदा में थोरी कॉल कई आहे।
2: अच्छा तव्हां रेडियो स्टेशन मौजूदु हो तव्हां
0: जी जी मां बिल्कुल प्रोग्राम थो कयां तव्हांखे हाणे क़ुरान खणा भला
2: अच्छा प्रोग्राम कयो दादा असांखे मुमताज़ मलाई जो गानो ॿुधाइजो।
0: अच्छा कंहिंजे नाले करणु चाहियो था कहिड़ो मुमताज़ मलाई जो गानो
2: मुमताज़ मलाई जो न त कोई बि गानो ॿुधायो असांखे।
0: अच्छा मुंहिंजा प्यारा भाउ कंहिंजे नाले था करणु चाहियो उहो गानो
2: पंहिंजे दोस्तनि नाले कान था चाहियूं साईं रियासन मां ॻाल्हायां मुसाल हुसैन हनी मोहम्मद हनीफ शर
0: ऐं
2: ॿियो नालो आहे निज़ामुद्दीन शर सदाम सिंग शर।
0: तव्हांजो पंहिंजो नालो छा आहे?
2: मुंहिंजो रियासन नालो
0: आहे रियाज़ हुसैन।
2: जी जी
0: ओके रियाज़ भाई मां हाणे हिकिड़ो ॿियो गानो थो हलायां हुनजे बाद तव्हांजी फरमाइश सलाह ज़रूर पूरी कंदासीं ठीकु आहे। सखर में हले थो पर मेहरापुर लड़कानो जिते जिते भी 88 ॿुधो पियो वञे लड़कानो मीरपुर खास हैदराबाद सभु जॻह ते मां हलां थो हिन वक़्तु नेटवर्क ते।
2: सखर नेटवर्क 88 असांखे जाम मंताज़ नथा ॿुधाए सघूं असांखे इहो मनोर मलाई कयो था
0: ज़रूर मुंहिंजा प्यारा भाउ ज़रूर ॿुधाईंदुमि ज़रूर थैंक यू। हमारे साथ बहुत प्यारे से रियाज भाई रियाज भाई तो मुझे ब्रेक भी नहीं चलाने दे रहे थे खैर एनीवे हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आप गाना सुनेंगे ज़ैनब की फरमाइश पर। ज़ैनब की फरमाइश के बाद हम मुनव्वर मुलाई या मुमताज़ मुलाई चलाएंगे जो कि हमारे रियाज भाई की फरमाइश पर होगा।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अपने वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के
6: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल जेका ॾे कुदरती निखार साफ नरम ऐं रोशन चेहरो पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
7: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें। और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
8: रिश्ता भरोसे का
9: या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: All right guys, welcome back. आप जितने हंसी हैं आप खुद भी नहीं जानते, जनाब ना जानते हैं ना मानते हैं, खैर कोई बात नहीं, जान भी जाएंगे मान भी जाएंगे। आपका अपना अशफाक आपके साथ मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। और जनाब अब हम लेते हैं शो की एक और कॉल और कहते हैं अपना कॉलर को अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: के रदा सा सबनी सा गड असद सकरण खां गलायो पिया, केड़ा हाल चाल है असद तांजा?
1: बिल्कुल
0: असद तांजी वॉइस के छा थे वाए सफा माना इया लगो पियो ता जने ता ते कोई मानु बैठवा तांजी आवाज ही नथी निकरे। हेलो
1: हेलो कलाम उधरायो
0: केड़ो केड़ो हाजुर साईं हाजुर हींअर त ॿुधायो तव्हां पंहिंजी थोरी आवाज़ खे ठीकु कयो तव्हांखे ज़रूरु मुंताज़िर मलाई ॿुधायां थो तव्हां अगरि कोई गाए ॿुधाईंदो त तव्हांजी महिरबानी गाए ॿुधाईंदो।

0: ओके ओके न्यू सॉन्ग हींअर त मां ॿुधायां मुमताज मलाई तव्हां बि हलाइणो आहे तव्हां कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो ओए होए होए होए होए थैंक यू सो मच अदा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ऐं असांखे दुआउनि में यादि रखिजो ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ हमारे साथ है जनाब इस वक्त बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं इस वक्त जो कि अपने ट्यूशन से आने के बाद मुझे सुन रहे हैं हमारे बहुत प्यारे से भतीजे हैं जनाब लाला फुरकान हमारे साथ अभी बहुत प्यारे प्यारे से भतीजे हैं जो कि अभी ट्यूशन से पढ़ के आए हैं लाला फुरकान खान जमाली दादा शेर जमान जमाली फैजान खान जमाली सुफियान खान जमाली हसनैन खान जमाली इफ्तिशाम असद जमाली अहम रईस और जनाब वडेरे और छोटे मोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको हम थैंक्स कहना चाहते हैं कि वो इतने प्यार से और मोहब्बत से हमें सुन रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतने प्यार और मोहब्बत से सुनते हैं और टोले टोले की सूरत में इस वक्त हमें सुन रहे हैं बहुत घेरा बना के बीच में रेडियो रखा हुआ है क्या बात है जनाब बहुत अच्छा अच्छा लगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहिए और यू ही एंजॉय करते रहिए थैंक यू बेटा तो जनाब आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं और यू ही एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यू ही एंजॉय करते रहें और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब बहुत प्यारी प्यारी सी हमारी भतीजी मौजूद हैं इस वक्त जो कि हमें सुन रही हैं कावी कामरान शेख जो कि इस वक्त हमें सुन रही हैं अच्छा जनाब तो मुझे थोड़ी मिस्टेक हो नहीं रही बल्कि सुन रहे हैं और ये हैं मोहम्मद कान शेख इस वक्त हमें सुन रहे हैं या कर हैं आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बट जो भी हैं बहुत प्यारे से बच्चे हमें सुन रहे हैं इस वक्त तो आप जी हजारों साल और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें थैंक यू सो मच और अब लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम आ गए हैं लेकिन बात करने का दिल नहीं चाह रहा हेलो अस्सलाम वालेकुम चलें जनाब कोई बात नहीं आप हमसे बात ना करें हम भी आपसे नाराज हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं जो भी हमें सुन रहे हैं 03000113488 लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आई थिंक वहीद जतोया साहब अपनी जगह
1: बिल्कुल वफ़ा अब्दुल वहीद
0: बिल्कुल वफ़ा साहब केड़ा हाल चाल है तव्हांजा
1: रोड़ीअ सखर जे विच ते
0: अच्छा रोड़ीअ सखर जे विच में छो आयो भला सफ़ा सफ़ा सफ़ा अलहमदुल्ला आहे ऐं मज़े में आहियूं असां पंहिंजे
1: आहे अॼु ॾाढी आहे गर्मी
0: वाकई
1: मुंहिंजे साह खे न आहे नरमी
0: वाह वाह
1: अॼु ॾाढी आहे गर्मी मुंहिंजे साह खे न आहे नरमी हींअर कुझु त कयो महिरबानी पोइ बि बिजलीअ खे त हलायो चलायो हाणे वई आहे सम्झ बुत अथऊं भई खला लही
0: वाह वाह
1: गर्मीअ छॾी आहे वॼाए वही
0: वाह वाह वाह वाह वाह इहा शेरी कहिड़ी हुई जेका माना न पुछो ई न
1: अलाह तव्हांखे तारनि जॾहिं ॼमारे ॾींदो यार नेज़े ते सिज लही आयो
0: हा सफ़ा नेज़े ते लही आयो असांजा पाप अहिड़ा आहिनि न असां कम
1: अहिड़ा
0: असां फुरूं बि कयूं था असां धोखाधई बि कयूं था असां फ्रॉड बि कयूं था असां चोरियूं बि कयूं था धाड़ा कयूं था इन लाइ
1: जी जी साईं बिल्कुल बिल्कुल
0: अलाह साईं असां सभिनी खे समझ ॾे
1: ऐं
0: अच्छा भई भई गानो थो हलायां मुमताज़ मौलाई जो कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
1: साईं पोइ गानो था हलायो असल में छा आहे चवंदा आहिनि शाणा त ले सघूं आनू रूह जे गिदा लाइ गानो लाज़मी
0: आहे
1: ऐं असल में पर पोइ जे हलायो मंतज़ मौलाई त इहो नगमो त नंढड़ी वही अमी तोखे इश्क लॻो अहिड़िया थी कट ते
0: अच्छा नंढड़ी वही में
1: हा
0: ओके कंहिंजे नाले करणु चाहियो
1: इहो साईं असल में भाई स्टाक आहे स्पेशली तव्हांजे नाले
0: मुंहिंजे नाले
1: ऐं तव्हांजो 88 सां जुड़ियल आहे बाबर शेख साहब मुंहिंजो भाचो आयाज़ अमन जतोई मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर अमन जतोई मुंहिंजो भाचो आहे आयाज़ अमन जतोई बाक़ी जेके जुड़ियल आहिनि वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई पारां सॼे सतह खे सलाह ऐं तव्हांजे सॼे टीम खे
0: थैंक यू
1: भाणी जो आ रफीक जतोई जो ॿुधे थो उन खोड़ सरा सलाम रफीक जतोई खे
0: रफीक जतोई स्पेशली जी जी रफीक जतोई बिल्कुल ॿुधंदो हूंदो छो न ॿुधंदो हूंदो त हमेशा असांखे ॿुधंदो आहे
1: वॾी महिरबानी साईं
0: थैंक यू सर थैंक यू जी जनाब बहुत से हमारे कॉलर्स ने फरमाइश की थी कि मुमताज मलाई चलाएं तीन कॉलर्स आ चुके हैं तो हमने उनकी फरमाइश को प्ले कर दिया है अब आप मुमताज मलाई को सुने आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 03000113488 पर हम इसके बाद ब्रेक है ब्रेक के बाद न्यूज ब्रेक है न्यूज ब्रेक के बाद फिर ब्रेक है उसके बाद हम आपके पास वापस आते हैं आपके शो आई लव यू ऑल में

0: मोरू
1: नोश हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: that is, it said, they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement. Talks are good, and they're going to have a lot of pain. Sign it. I will. A lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it.
1: चड़पन ईरान सा जंग बंदी बरकरार आहे तेहरान सा गालियूं जारी आहिनि माइदो कैंप इजाज़त ईरानी अमलनि खे नाकाम बणायो ट्रंप जी हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर जी वाखाण सदर ट्रंप चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका फ़ौज ते अमल दरामद रोकियो अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त अॼु ईरान जो जवाब मिलण घुर्जे हा पर हिन वक़्त ताईं को बि जवाब नाहे मिलियो हिज़बुल्लाह सां कंहिं बि ॻाल्हियूं न थींदियूं असांजो ध्यानु रुगो लेबनानी हुकूमत ते आहे गुज़िरियल राति ते ईरान ते कयल हमला ऑपरेशन एपिक फेवरी जो हिसो न हुआ असां ते मिसाइल फायर कया वेंदा त जवाब ज़रूर ॾींदासीं ईरान जे परडे वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त जड॒हिं को सिफारती हल मेज़ ते ईंदो आहे त अमरीका गैर ज़िमेवारो मिलिट्री एडवेंचर करे सघंदो आहे को बि सबबु हुजे पर नतीजो हिकु ई हूंदो त ईरान कंहिं बि सूरत दबाउ अॻियां न झुकंदो सीआईए असांजे मिज़ाइल सलाहियतनि जो ग़लति अंदाज़ो लॻायो असांजी मिज़ाइल पैदावारी सलाहियत 28 फरवरी जी भेट में 75 नंबर 120% वधीक आहे ईरानी अवाम जे दिफ़ा लाइ असांजी तयारी 1000% आहे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सिंगापुर जे परडे॒ही वज़ीर वियन बालाकृष्णन सां राब्तो अमरीकी हिरासत में मौजूद ईरानी बहरी जहाज़नि जी पाकिस्तानी ऐं ईरानी अमले जी वापसी लाइ सहकार करण जी दरख़्वास्त इसहाक़ डार चयो त मामले ते ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखी सां बि राब्ते में आहियां वियन इसहाक़ डार चयो त मामले ते ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखी सां बि राब्ते में आहियां पाकिस्तान ईरानी शहरियुनि जी महफ़ूज़ वापसीअ लाइ सहूलत प्राप्त करण लाइ तयार आहे अमरीका पारां ज़ब्त कयल ईरानी बेड़नि ते 11 पाकिस्तानी ऐं 20 ईरानी शहरी मौजूद आहिनि

0: अब्यूज
1: मटियारी के हरी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: किरु शोक हो ना तो के मुझे रो पाए तैयार थे जो
3: तू आज भी हसी
2: थोरो पाए तो देखार
4: ना मा मा थकी पई आया
2: ना पुटा ये थकना है रत जी कमी है दिसता केडो ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
4: छा कया मा
2: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद से आई अई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलूं खाई विंदा हुआ से उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही पहंजो ख्याल रखन बियन खांप वधिक जरूरी है
3: मेरी बात तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है
5: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
6: छा अहां जो चेहरो बेजान ए डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम ए रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: मत जो कलाम बुधायो
1: कहिड़ो
0: परमल सिंह जो मारू
1: बिल्कुल बिल्कुल कें जे नाले ते करण चाहियो
0: जमीन में सोलंगी शक्ति सोलंगी
1: जी जी
0: शक्ति सोलंगी
1: जी जी जी जी जी ठीक है थैंक यू अदा थैंक यू आज खास ख्याल रखो थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यार से दोस्त जनाब और हमारे बहुत ही रेगुलर कॉलर हमारे साथ आजकल नहीं आ रहे जनाब वो खबड़ी भीड़ से आते थे हमारे बहुत प्यारे से कॉलर और गुलाबी संगत से आते थे और जनाब बहुत अच्छे अच्छे कॉलर हमारे साथ इस वक्त एबसेंट है तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जनाब एबसेंट मत हुआ करें आप हमें कॉल करें 03000113488 और हमारे कश्मीर से भाई आते थे वापडा वाले भी वो भी नहीं आ रहे अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: केर असा सबनी सा गरे दा
2: शिकारपुर खान साहब जमालदीन भयो
1: जमालदीन भयो साहब शिकारपुर खान केड़ा हाल चाल है जमालदीन भयो साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ता भारे जी दुआओं अन मुसा गरी यो बुधायो शिकारपुर में गर्मी शर्मी आहे या कोन आहे
2: गर्मी काफी
1: है काफी आ त पो शिकारपुर जो जको आहे स्विमिंग पूल ते वनो तड़बड़ क्यों कोई एंजॉय क्यों लाइफ के
2: बिल्कुल बिल्कुल जरूरी करू आई सलाम
1: हा बिल्कुल बिल्कुल ट्यूबवेल जो मजो ही पाजो आ ट्यूबवेल तो हुंदा न ते हले आवनो
2: हा बिल्कुल काफी
1: हा माशाल्लाह माशाल्लाह जमालदीन भयो साहब यो बुधायो गानो तो हलाना चाहया मा हाने फरमाइश आई आ है सरमा सिंधिया जे मारुआरा जहांगीरा जी केन जे नाले ते करन चाहयो हेलो जमालदीन भयो साहब आर यू देयर ओए होए आई थिंक कॉल ड्रॉप यू हियर जमालदीन भयो साहब जी पर कोई मसलो ना है तो अगेन कॉल कर सको था 03000113488 ते अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम झिलूरी कादा खालिक लाशरी गला
1: खालिक भा झिलूरी खां केड़ा हाल चाल है खालिक भाजा
3: अल्हम्दुलिल्लाह मुजा मिठड़ा खटड़ा भा तू गया
1: मिठड़ा खटड़ा भी
3: खटमठे जेड़ा भा
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेहरबानी मेहरबानी अच्छा खालिक भाई यो बतायो गर्मा गर्मी जो दियो हाल तो घर में गर्मी केतरी आते ताजे इलाके में
3: असावता ये नॉर्मल गर्मी माशाल्लाह हवा बेहतरीन लगे पे मौसम तमाम सुठी है
1: भला केड़े मुल्क में रहंदा असा के बुधायो
3: नहीं मिठुखा के पासे में
1: अच्छा हां उते वाकी हवाओं हलंदियो न यार
3: या तमाम सुठी हवा ले भाई
1: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त यो बुधायो त जेको आहे मां गानो तो हलाण वारो आया के जे नाल करण चाहियो
3: गानो असा निकली नगरी फरमाश है बा फौजिया सुमरो जो कलाम है
1: अच्छा मां प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करदम इंशाल्लाह ताला छो तहीं बेर फरमाइश है त मां उहा करदम पहिरी पोइ तांजी भी करदम इंशाल्लाह
3: इहो आहे त तोखे विसरण लाइ जानी मूंखे ज़मानो अञा लॻंदो दोस्त सभु इंतज़ार में वेठा आहिनि
1: सही सही सही
3: कुझु दोस्तनि खे यादि बि कंदासीं
1: अच्छा बिल्कुल कयो
3: अज़ीज़ जलवार अज़ीज़ सोलंगी कुर्बान ख़ास के लिए यार ममन सोलंगी गुलाम रसूल मरी आहे
1: सही सही सही थैंक यू ख़ालिक भा मां प्ले करण जी पूरी पूरी कोशिश थो कयां
3: महिरबानी
1: थैंक यू हमारे साथ जनाब इरशाद मलिक और जनाब बहुत से लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ रहिए और हमें यूं सुनते रहिए है। लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर कौन अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम
1: केर सा सबनी सा गडो
4: रहमान अली चंबानी
1: रहमान भाई केड़ा हाल चाल है
4: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है सही तां बुधायो पुछायो
1: सफा मजे में यो बुधायो त छा पिया कयो केड़ो कम कंदा आयो
4: बस फिलहाल तो तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ॾाढो एंजॉय कयां पिया ॾाढो मज़ेदार प्रोग्राम तव्हांजो
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह त कीअं हले थो तव्हां कीअं लॻे थो प्रोग्राम
4: तमामु ज़बरदस्त साईं तमामु बहितरीन असली
1: अच्छा
4: हा बिल्कुलु छा ॻाल्हि कजे तव्हांजी आवाज़ तव्हांजे अंदाज़ो
1: थैंक यू सो मच तव्हांजा कुर्बान तव्हांजा प्यार आहे इहो ॿुधायो त जेको आहे मां गानो थो प्ले कयां इहो सरमा सिंधी जो कंहिंजे नाले करणु चाहियो
4: बस हिन वक़्तु जेतिरी त मुंहिंजी आवाज़ वञे थो जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे डेडिकेट मुंहिंजी तरफ़ां
1: थैंक यू सो मच अदा थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 शाम के ढलते साए और गर्मी निकम होने का नाम नहीं लेना खैर क्या कर सकते हैं दुआएं कर सकते हैं कि ठंडी ठार हवाएं चल जाए लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम दिल से करे इरफान इरफान आएगा
1: इरफान देखो मैंने अभी याद किया आपको
5: मैंने अभी शो सुना
1: हाँ
5: और
1: मैं तो नहीं गिना आई एम जस्ट किडिंग यार और सुना इरफान कैसे हो
5: वो सिंधी में कहावत है ना
1: हाँ हाँ अच्छा एतिरी ॾींहं किथे हुयो तव्हां इरफान भाउ
5: बस अशाक भाउ तव्हांजे प्रोग्राम में न पिया शामिल थी सघो ऐं सच सच ॿुधायांव त कॾहिं कॾहिं तव्हांजो फोन धोखो पियो करे न
1: इरफान शादी करे छी हाणे परायो थी वियो
5: आहे न
1: अच्छा न त मां सम्झुमि त तव्हां इन स्टेटमेंट ते गानो ॻाईंदो मां तुंहिंजो आहियां जानी तोखे वहम अजायो अच्छा इरफान भाई तव्हांजो कमु कार कीअं थो हले ऐं तव्हांजी पढ़ाई वढ़ाई बि आई थिंक हलंदी हूंदी त कीअं हले थी
5: न बिल्कुल असांजी पढ़ाई न आहे सुठो थो हले अश्ताक भाई
1: जी जी
5: सरमत सिंधी जो जेको सॉन्ग तव्हांखे प्ले करणो आहे ख़बर अथव कहिड़ो प्ले करणो आहे
1: मारुआड़ा जांगीअड़ा
5: न छो त सिंगर तव्हां ॿियनि खां पुछियो आहे त सॉन्ग असां
1: एक्ज़ेक्टली उन भाउ असांखे गानो बि चयो आहे मारुआड़ा जांगीअड़ा
5: मुंहिंजो सॉन्ग ॿुधो त सही न
1: ॿुधायो ॿुधायो क्या बात है तमाम वड़ा सुरीला थी वया हो केड़ा गम मिला था मनी इनी अरसे में
5: इहो ॿुधायो इहो पुछो त कहिड़ा तव्हांखे ज़िंदगी में सुख मिलिया आहिनि
1: सुख त मिलिया ई मिलिया हूंदा अलाह ताला तव्हांखे हमेशह सुख ॾे पर कोई गम मिलियो आहे जॾहिं त आवाज़ में सुरीलो सुरीलो पवंदो आहे
5: गम इलाही मिलिया आहिनि माण्हुनि बाबा दिलि तोड़े छॾी
1: कार कयो बसि हाणे ॿुधाइजांइ न ख़ुदा जो न टाइम न आहे ॿुधाइजांइ न हाणे इहो ॿुधायो त इहो गानो कंहिंजे लाइ रखणु चाहियो कौन सा वाला बोला आपने
5: चेत्र में चई वियो ईंदुसि मां पर कती बि गुज़री वई
1: अच्छा चेत्र में
5: चई वियो ईंदुसि मां
1: ऐं छा गुज़री वई
5: ऐं कती बि गुज़री वई
1: अच्छा ओके आगे आगे आगे आगे
5: कटी
1: मां चओ जेका मेहूं खाईंदी आहिनि कटी उहा
5: न न उहा न
1: अच्छा ओके ओके सही आहे कंहिंजे लाइ करणु चाहियो
5: अशोक भाउ तव्हां सां ॻाल्हाए ॾाढी ख़ुशी थी हाणे 22-23 मिंट थी विया आहिनि मां चवंदो कुझु सॉन्ग बि हले
1: त
5: हिन जे करे मुख़्तसिर ॻाल्हायूं सॉन्ग बि तमामु सुठो आहे जीअं सॉन्ग हलंदो न मां रेडियो जो आवाज़ फोन
1: कंदुमि
5: मज़े सां इंजॉय कंदुमि हिन सॉन्ग खे सलाम तव्हांखे तव्हांजी पूरी टीम खे हुन खां पोइ सिस्टर मिसिस अली फौजिया फरज़ाना राय कुमरो हाफिज़ गुलाम अहमद सांबल बचल चंबाणी
1: वालेकुम असलाम इरफान साहब जिते भी रहो खुश रहो थैंक यू सो मच अदा
5: थैंक यू अल्लाह

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Gloss Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Gloss Bleach Cream.
2: सजो ॾींहुं ॾिसां थी तो के परेशान घुमंदी रही आ. पहिरियों भेरो मां थी रही आहीं न, मुंहिंजो बि इहो ई हाल हो.
3: ख़बर न आहे तव्हां ही सभु कुझु कीअं कयो नानी. मां त एतिरो थकी थी पवां. छा कयो हो तव्हां?

0: ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध की हो तो आप

एनीवे को आपको बता रहे थे शो के स्टार्टिंग में कि जनाब आज थैलेसिमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम अपने तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो प्लीज थैलेसिमिया के बच्चों के लिए जनाब

0: जी जी
1: मुझे दोस्त गवार में फिर शंबानिया इरफान फिरबोआ अली हसन बाबोआ
0: जी जी
1: जावेद बंजारा इरशाद बंजारा जेका हिन वक़्तु पथर शहर में मिलंदा आहिनि इलाही सारो सलाम अब्दुला भंगवार जी तरफ़ां
0: अब्दुला भंगवार खे बि वालेकुम असलाम सभिनी सखर वारनि जी तरफ़ां थैंक यू सो मच बिल्कुल जनाब असा सभी संग हुआ अब्दुल्ला भंगवार साहब फ्रॉम कंदकोट और तमा भी मुख्य कॉल कर सको था 03000113488 वठूं था शो दी नेक्स्ट कॉल आई चाहूं था अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: कौन हमारे साथ
2: लुबना थी सुनी संगत में
0: लुबना गलहाय थी लुबना भेण केड़ा हाल चाल है तवाजा ठीक ठाक आयो
2: जी जी मां ठीक आ तो हुंदा तो पानी नहीं का तो थकी जी क्या
0: आई एम सो सॉरी छोटा तमा जेड़ा प्यारा प्यारा जका हन भेण भार असा के कॉल कंदा है ना इन लाई लाइन तमाम घणी बिजी हुंदी आ है
2: सब पा काल हन वेनी सने बा में सुर पे जा वरी गर्मी वरी एडी आ सब पाई गर्मी बेश दी कनी वनी
0: बाकी गर्मी बेहोश थी कंदी वनी अल्लाह साईं का दुआ भी तो घुरो ना दी ता गर्मी घट थी वनी
2: जी जी गर्मी घटे थी नहीं पर काटी दी गर्मी आ तो बा करे वनी
0: छो भला तमा काथे बिठायो
2: असा खैरपुर में ठाऊ लुकमान में
0: अच्छा खैरपुर में गर्मी इलाही आ उते इते भी इलाही आ
2: एडी गर्मी तो असा पाई सा ओदी कदे
0: अल्लाह साईं भलाई कंदो यो बताओ छा कंदा हो लुबना भेण
2: माता ने थी रुका उते टमाटर माम सा मा बर्त भरिनिया
0: अच्छा बर्त भरिदा अच्छा तमा उही लुबना जेका बर्त भरिंदिया
2: जी जी बर्त भरिना और रिलीज से बना अगर टाईंदा हूं कटू में से हो कना हूं वाईना हूं
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
2: कनियो भरिना और माला भरिना सब भरिया हूं
0: माशाल्लाह तमाम घणी टैलेंटेड असा अदी आहे जेका अच्छा अदी तवा यो विकणो था माना मार्केट में
2: नन्ना संगे पानी वो खागवानी पनवा के लगी जान में काट कर पई को छट्टा भरे लगी है
0: अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त यो बताओ ता के असा शो के लगदो आप
2: सब पाता ने शो शागार करी सब पाता ने शो सब पई आए की हत
0: थैंक यू सो मच अदी तमा जो स्टाइल तमाम घणो मुखे पसंद आयो हतित यो हतित छाऊं दो आ
2: असा सिंधी जो नाम हतित माना वीआईपी शो
0: माना सफा वीआईपी आ
2: जी जी
0: ओके ओके अच्छा लुबना भेण मां अहमद मुगल जो गानो थो हलाया कहें जे नाले ते करण चाहियो
2: असा के ता गानो बुधरा हुन जो तानियर छे जो
0: कहें जो
2: तानियर छे जो गानो ता के बुधायम ता उ हलाय जो
0: अच्छा मुखे बुधायो गानो
2: क्यों जाने क्यों होता है सब पे जुदा अपने जुनून अपनी अपनी धुन में सारे गम गली गली नगर नगर बदल रही नहीं नगर

0: की जावे के मांगू तुझे रस्ते में।
1: क्या बात है, क्या बात है लुबना, आपकी आवाज बहुत प्यारी है माशाल्लाह ताला।
0: सिंगर
1: हाँ, तव्हां जी आवाज़ तमामु घणी प्यारी आहे। तव्हां जा अला नसीब भला करे, तव्हां खे हमेशह अला साईं ख़ुशि रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ऐं हमेशह ख़ुशि रहो।
0: सलाम ज़ैनब खे, जेकी साम्हूं थी वर्त भरींदी आहे।
1: हा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
0: थैंक
1: यू। हमारे साथ ही जनाब लुबना, और लुबना के बाद अब हम शो को करते हैं पर वाइंड अप और गाना चलाते हैं। जनाब लुबना की फरमाइश पे तो गाना नहीं चल सका, आई एम सो सॉरी लुबना, और हम चलाते हैं जनाब वो वसीम भाई आए थे उनकी फरमाइश पे, चलें एक कॉल ले ही लेते हैं। ले लें, चलें जनाब अब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यारा भाई केरे सा सबनी सांगा दिल उम्मीद भा
2: अमीर बख्श,
1: अमीर बख्श साहब क्या हाल चाल है? यार बिल्कुल मैं प्रोग्राम एंड करने वालों हैं पर मां चम तो अय्या काल वठा भला। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर भाई साहब केड़ा हाल चाल है? ठीक ठाक आए हो गर्मा गर्मी की? थैंक यू सो मच अदा, ये दुआ कंदा रहो, अल्लाह ताला तांके हमेशा खुश रखे। आए मुझे प्यारा भाई लव यू यार, इो गानो
2: कलाम भलो बुधा भलो कलाम है बिल्कुल ये भला भलो थी।
1: हाँ कैसे नारा करना चाहो
2: यार दोस्त मोहम्मद अली माल गंगा रत्न जो प्रोग्राम बुधे पे पठान खान पटके
1: जी।
2: ओके
1: ओके मुझे प्यारा, थैंक यू सो मच जी। जनाब बाबा ये गाना सुने वसीम की फरमाइश पर, और अशफाक न्याजी को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी। और थैलेसमिया के हवाले से हम आपको यही कहना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट कीजिए और थैलेसमिया के बच्चों

ईरान ऐं अमरीका जो हिकु ॿिए ते जंगबंदी जी भचकड़ियुनि जो इल्ज़ाम। अमरीकी फ़ौज कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते हमलनि जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी फ़ौज जो बि भरपूर जवाब। अमरीकी बहरी जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सेंटकॉम पारां जारी कयल बयान में चयो आहे त कशम ऐं बंदर अब्बास पोर्ट ते ॿिनि हंधनि खे निशानो बणायो आहे। हमलनि जो मक़सदु ईरान सां ॿीहर जंग शुरू करण आहे। अमरीकी जहाज़नि ते हमलनि बाद ईरान ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कई आहे। ईरान जे ख़ातम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स मूजिब ईरानी फ़ौज अमरीकी हमलनि जो जवाब ॾिनो आहे। आबदा हुरमुस जे ओभर ऐं चाबहार बंदरगाह वेझो अमरीकी फ़ौजी बेड़नि खे निशानो बणायो वियो, जिन सां खेनि घणो नुक़सान पहुतो आहे।

0: these strikes? Is the ceasefire with Iran still on?
1: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
0: Could you give us an update on what is the latest in that talk?
1: No, the talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
2: झड़पा नए हमलनि बावजूद ईरान सां जंगबंदी बरकरार आहे. तेहरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि. वाइदो कंहिं बि वक़्तु थी सघे थो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका जा टे जंगी बेड़ा अपना हुरमुस पार करे विया आहिनि. जहाज़नि ते ईरानी हमलनि खे नाकाम बणायो. ट्रम्प जी हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी वाखाण. सदर ट्रम्प चयो त पाकिस्तानी क़यादत जे चवण ते अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम ते अमल दरामद रोकियो.
1: The really wonderful leadership at the place, as you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
2: अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अॼु ईरान जो जवाब मिलणु घुर्जे हा, पर हिन वक़्त ताईं को बि जवाब नाहे मिलो. हिज़बुल्लाह सां कंहिं बि ॻाल्हियूं न थींदियूं. असांजो ध्यानु रुगो लबनानी हुकूमत ते आहे. गुज़िरियल राति ईरान ते कयल हमला ऑपरेशन एपेक फेवरी जो हिसो न हुआ. असां ते मिज़ाइल फायर कया वेंदा त जवाब हल बेस ते ईंदो आहे त अमरीका गैर जिम्मेवारो मिलिट्री एडवेंचर करे छॾींदो आहे. को बि सबबु हुजे पर नतीजो हिकु ई हूंदो त ईरान कंहिं बि सूरत दबाव अॻियां न झुकंदो. सीआईए असांजी मिज़ाइल सलाहियतनि जो ग़लति अंदाज़ो लॻायो. असांजी मिज़ाइल पैदावारी सलाहियत 28 फेबरवरी जी भेट में 75.120% वधीक आहे. ईरानी अवाम जे दिफ़ा लाइ असांजी तयारी 1000% आहे. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो सिंगापुर जे परडेही वज़ीर व्योन बालाकृष्णन सां राब्तो. अमरीकी रियासत में मौजूद ईरानी बहरी जहाज़नि जी पाकिस्तानी ईरानी अमले जी वापसी लाइ सहकार करण जी दरख़्वास्त. इसहाक डार चयो त मामले ते ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राक्षी सां बि राब्ते में आहियां. पाकिस्तान ईरान शहरियुनि जी महफ़ूज़ वापसी लाइ सहूलत फराहम करण लाइ तयार आहे.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

कोचे केसर जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हैवी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हैवी नेचुरल्स।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। जी एस अखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम सेहत नंबर के रौनक महफिल सान करें आऊं आया हूं जो पंजो मेजबान बाबर शेख। इन्हीं उम्मीदों से तो अवां बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा। अल्लाह पाक अवां सबनी ते पंहिंजी रहमतुन जा साया बरकरार रखे। अवां जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो। लिसन्स, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम आहे, जीए एफएम नेटवर्क आहे। इन प्रोग्राम में 8 वगे ताईं अवां जो ऐं असां जो साथ इंशाल्लाह ताला जारी रहणो आहे। लिसन्स, अॼु जी तारीख़ आहे 8 मई 2026 ऐं जुमे जी शाम आहे 7:12 टाइम थियो आहे, यानी प्रोग्राम अवां बिल्कुल लाइव ॿुधी रहिया आहियो। लिसन्स, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर आहे अवां ताईं पहुचाइण लाइ तावन कयो आहे हेमे नेचुरल्स वारनि, ऐं हेमे नेचुरल्स वारा जेके आहिनि उहे बाक़ायदा तौर ते इन ॻाल्हि खे कन्वे करण लाइ मूंखे चयो अथनि त हिन जी जेका प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम, इन में शामिल आहे SPF 30, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, वाइटमिन सी, आर्बुटीन ऐं ॿिया केतिरा ई नेचुरल इनग्रीडियंट्स जेके अवां जे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि। बिल्कुल दोस्तो, हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहिनि इन्हनि जे लाइ इन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त जेको SPF 30 इहो शामिल आहे हिन में, इहो तव्हांखे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो, यानी सिज जे नुक़सान खां रेस खां महफ़ूज़ रखे पियो। सेकेंडली, इन में जेको कॉजिक एसिड शामिल आहे इहो तव्हांजे चेहरे तां दाग धबा निशाना जो ख़ात्मो करे पियो, ऐं ग्लूटाथायोन, वाइटामिन सी ऐं आर्बुटीन जेको इन में शामिल आहे इहो अवांजे चेहरे जे स्किन खे तमामु घणो फ़ाइदो ॾिए पियो। लिसन्स, विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे पियो, ऐं इन्हनि इन ॻाल्हि खे ते इंसिस्ट कयो आहे त तव्हां जॾहिं हेमे ब्यूटी क्रीम वठण वञो पिया त हिकु त शहर जी शाही बाज़ार तव्हां वञो, उते तव्हांखे आसानी सां सुठी कॉस्मेटिक्स वारी वटि हेमे ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी, ऐं सेकेंडली तव्हांखे छा करणो आहे, कुझु निशानियूं इन्हनि ॿुधायूं आहिनि, उहे निशानियूं तव्हांखे ज़हन में रखी पोइ तव्हांखे इहा परचेस करणी आहे। सो निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि, हिकु त इन जी डबी गुलाबी रंग जी आहे, ऐं टॉप लेफ्ट साइड तां गुलाब जो गुल छपियल आहे, सो बि गुलाबी कलर में, ऐं हेमे नेचुरल्स लिखियलु आहे ब्लैक राइटिंग में। इहे तव्हां निशानी तौर ध्यान में रखी करे पोइ तव्हां इहा परचेस करे सघो था, ऐं सिर्फ़ इहो ई न, तव्हां जॾहिं वठी अचो पिया त हिन सां गॾु पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी जेकी आहे उहा असांखे व्हाट्सएप ते सेंड कंदो, तव्हांजी उहा सेल्फी असीं कुरानदाज़ी में शामिल कंदासीं, ऐं एवरी वीक जेका आहे कुरानदाज़ी थींदी आहे, सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो आहे। त तव्हां बि 500 रुपियनि जो कैश इनाम खटी सघो था सिंपली हेमे ब्यूटी क्रीम सां गॾु पंहिंजी सेल्फी सेंड करे। तो दोस्तों, सेल्फी सेंड करण लाइ नंबर आहे व्हाट्सएप जो 03000113488। इन खां अलावा हेमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा तव्हांजे शहर में जेकॾहिं न मिले या इन मुतालिक़ तव्हांखे का बि मालूमात घुर्जे त तव्हां इन्हनि जे नंबर ते राबितो करे सघो था। राबते जे लाइ इन्हनि जो नंबर आहे 03000367135407। नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, तव्हां नोट करे सघो था 03-36-71-35-407। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था, इन्हनि खां पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे। सो लिसन्स, बिल्कुल हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में तव्हांखे वधीक बि मालूमात मां ॾींदो रहंदुसि, ऐं इहो बि ॿुधाईंदो हलंदुसि त इन जी तरीक़ा इस्तेमाल छा आहे, ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त अॼु जे प्रोग्राम में सेगमेंट आहे गुजारत गुजरी ऐं अवां जी फरमाइश। बिल्कुल दोस्तो, इन गुजारत गुजरी सेगमेंट में अवां जे लाइ जेका गुजारत आहे उहा कहिड़ी आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। अॼु जी गुजारत आहे त उहो केरु आहे जेको गूंगो, ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर हमेशा सच ॻाल्हाए थो। तमामु सवली गुजारत आहे। उहो केरु आहे जेको गूंगो, ॿोड़ो ऐं अंधो आहे पर हमेशा सच ॻाल्हाईंदो आहे, ठीकु आहे? इन जो जवाब तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी ॾींदो, ऐं अवां जी फरमाइश सेगमेंट में सिंपली तव्हां पंहिंजे फेवरेट सिंगर जी फरमाइश कंदो, जंहिं सिंगर जा वधीक वोट हुया उहो सिंगर मां प्रोग्राम में शामिल कंदुसि। ऐं कल्ह जीअं मां ॻाल्हि करे वियुसि त अॼु वध खां वधि तव्हांजी लाइव कॉल्स इंक्लूड कंदुसि, त तव्हां लाइव कॉल करे सघो था। असांजो नंबर आहे 03000113488। सो हींअर प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम अवां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे, तव्हां कलाम ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहो रौनक महफ़िल में पूरे 8 वगे ताईं।

0: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम में जबरदस्त कलाम तमाम बुधो, उम्मीद आई अवां के पसंद आयो हों दोस्तों। इन खां अलावा तमाम के बुधाइंदो हलां त रौनक महफिल प्रोग्राम में अज अवां जे लाइ गुड न्यूज आए लाइव कॉलर जे लाइ, छाकाणि त अॼु व्हाट्सएप जेको आहे न असांजो जवाब ॾेई बीठो आहे, ऐं इन जे लाइ लाइव कॉलर्स अॼु वध खां वध प्रोग्राम में शामिल थींदा, ऐं व्हाट्सएप वारनि खां अॼु जे लाइ माज़रत। अॼु व्हाट्सएप वारा जेके आहिनि उहे ज्वाइन न करे सघंदा, बल्कि व्हाट्सएप जे ज़रिए ज्वाइन न करे सघंदा, बाक़ी लाइव कॉल त नंबर ऑन आहे। कॉल
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
3: अब आप सुनेंगे
0: आई हैव ए नेचुरल।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम में जबरदस्त कलाम तमाम बुधो, उम्मीद आई अवां के पसंद आयो हों दोस्तों। इन खां अलावा तमाम के बुधाइंदो हलां त रौनक महफिल प्रोग्राम में अॼु अवां जे लाइ गुड न्यूज़ आहे लाइव कॉलर जे लाइ, छाकाणि त अॼु व्हाट्सएप जेको आहे न असांजो जवाब ॾेई बीठो आहे, ऐं इन जे लाइ लाइव कॉलर्स अॼु वध खां वध प्रोग्राम में शामिल थींदा, ऐं व्हाट्सएप वारनि खां अॼु जे लाइ माज़रत। अॼु व्हाट्सएप वारा जेके आहिनि उहे ज्वाइन न करे सघंदा, बल्कि व्हाट्सएप जे ज़रिए ज्वाइन न करे सघंदा, बाक़ी लाइव कॉल त नंबर ऑन आहे। कॉल यू
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ਕੀ ਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈਮੇ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਦਬਾ ਮੋਇੜਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਵਧੀਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੇਂ ਤਵਾਂ ਹੈਮੇ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾਈਂਦੋ, ਸੁਮੀ ਰਹਿੰਦੋ, ਜਨੇ ਸੁਬੂਹ ਜੋ ਉਥੰਦੋ, ਉਥਣ ਮਾਲ ਅਗੇਨ ਤਵਾਂ ਪੈਂਦੋ ਚਿਹਰੋ ਵਾਸ਼ ਕੰਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਵਿਦ ਇਨ 7 ਡੇਜ਼ ਤਵਾਂ ਕੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀਂਦੋ, ਤਵਾਂ ਪਾਣ ਫੀਲ ਕੰਦਾ ਤਿਆਰ ਵਾਕਈ ਹੈਮੇ ਤ ਹੈਮੇ ਆਈ, ਐਂ ਹੈਮੇ ਜੋ ਕਮਾਲ ਅਵਾਂ ਜੋ ਚਿਹਰੋ चोटी जे चंद जी चमकी सके तो जी हाँ तवाने के इस्तेमाल करे सको था देन तवा यो फैसलो करे सको था असा जे लिसनर्स जेके इस्तेमाल कंदा आइन उ पेनो फीडबैक दीना आइन तवा उनन जी फीडबैक मा पेन फायदो हासिल करे सको था आइन तवा पाणी अंदाजो लगाए सको था ते हैमे जे कैन उ बेन प्रोडक्ट्स सम बिल्कुल डिफरेंट आ छो डिफरेंट आए छाकाण ते नमे जेके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आइन आइन जो जेको मोटो आए तवा के नेचुरल गिलो दे पियो मा समझा पे फायदे वारो आए। सो लेट्स सी फर्स्ट कॉलर असा सा गड केयर मौजूद आइन। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर जेके अंत अजे मसलो पिया कन, बल्कि कॉलर्स भी मसलो पिया कन जेके मां रिजॉल्व करण की कोशिश क्या पियो। सो अचूं पिया 888 वारे मैसेजेस ना। सुल्तानपुर का अब्दुल गनी जुनेद साहब ज्वाइन किया है, लेकिन भैया बाबर साहब हैमे नेचुरल्स ब्यूटी क्रीम नाइस है एंड जवाब है ओके जी, आपका जवाब मैंने नोट कर लिया है। और सलाम कहा है आपने नादिर अली गबोल को एंड पठान जुनेद को। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गनी जुनेजो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, क्या हाल है? सिकंदर अली जावरी, अरसलान अली जावरी एंड कामरान अली जावरी जावरी रिजवान अली जावरी गोठ रोशन अली जावरी खां अलियाबाद स्टॉप से हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया जावरी साहब। एंड इन का अलावा जो है 888 वारा मैसेज थोड़ा स्लो आन, बाकी लाइव कॉलिंग जो है नंबर मूव ऑन किया है, कॉल कर सको था। लिसन तव बुधाई हलां तो हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जो इो भी फायदो आए। तो लेट्स सपोज तव हैमे ब्यूटी क्रीम कुछ अर्सो इस्तेमाल कर था अगत हली इस्तेमाल कर छे पा डो, तो इन प्रोडक्ट जो तवे ही चवंदा साइड इफेक्ट न मिलो, काफी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अड़ी हूं जी तव इस्तेमाल कर वक्ती तो ठीक है तक फायदो मिले हुए, पर कुछ अर्से का बाद में वो फायदो जो है साइड इफेक्ट्स में तब्दील थी वो। पर हैमे नेचुरल्स वारन यह दावा कई है जी या प्रोडक्ट आए हैमे ब्यूटी क्रीम या इस्तेमाल करण से तवे चेहरे त दाग धबन निशाना जो खात्मो थी सके तो तवा पान जो है अंदाजो लगाए सकंदो तो वाकई यार हैमे में जेके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आइन ये हमारे चेहरे जी स्किन के बाकायदा तौर ते फायदो देन पिया। सो फर्स्ट कॉलर मौजूद है, लेट्स सी लाइन ते गड़ के रहन। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: साईं, केर सा गलायो भा?
1: अब्दुल मजीद बिड़े चाले सा गलायो
0: भा। अदा अब्दुल मजीद केड़ो हाल आ, ठीक आयो? तबे ठीक आए अदा, यो बुधायो तो तवां जी केड़ी फरमाइश आए, केड़ो सिंगर बुधन चाहिंदो? अहमद मुगल, ठीक आए। सो अहमद मुगल किन के डेडिकेट कंदो अदा? ठीक आए,
1: शोएब अली चांगियो,
0: ठीक है अदा, तां जी वरी मेहरबानी। सो दोस्तों अहमद मुगल जी ने फरमाइश कही है, लेट्स सी अगते फरमाइश केंजी अचे पई, मां टे कॉलर शामिल करे पई वो सिंगर प्ले कंदो सवा सबिन जिलाए। आई लिसनर्स तवा के मां हेल्पलाइन नंबर भी बुधाइंदो हला, छाकण त काफी सारा अड़ा लिसनर्स आइन जेके चवंदा आइन त बाबर भा असा काफी जांच कई आए पर असा ने शहर में गोठ में इलाकन में हैमे ब्यूटी की नथी मिले उन जिलाए छा करण गुरजे, त बाबा सिंपली तवा इनन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल कंदो। इनन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 0336-7135-407 जी हाँ 0336-7135-407 इन नंबर से तुम कॉल करें हैमे ब्यूटी क्रीम के बारे में इनका मालूम वी सो था पुछी सो था तो जी अहां शहर के वेझे कड़े स्टोर से हैमे नेचुरल्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केर आए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अदा केर था गलायो भा?
1: शिकारपुर का बाबर साहब जमाल दिन भयो।
0: साईं भयो साहब छा हाल आ, ठीक आयो? अलहमदुल्ला भयो साहब, केड़ो सिंगर बुधन चाहिंदो? ममताज लाशारी, ठीक है। यो बुधायो हैमे ब्यूटी क्रीम के बारे में अहां जो छा रायो आए?
1: हैमे क्रीम जबरदस्त

0: कराए साईं, अहमद मुगल या मुमताज लाशारी?
1: जी सर,
0: अहमद मुगल या मुमताज लाशारी? साईं आवाज अच्छी, आवाज अच्छे पे भा? चलो साईं माज़रत, तव्हां वटि सिग्नल जो इशू थी वियो आहे, सो इट्स ओके, हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कयूं पिया, उन खां इहो फ़ैसिलो करायूं पिया। सो लिसनर्स, अॼु जेको आहे जुमे जी शाम आहे ऐं सुभाणे छंछरु, सुभाणे क़ुरानदाज़ी कंदासीं इनशाला। अव्हां जूं सेल्फीज़ वधि खां वधि ईंदियूं त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी, ऐं तव्हां जूं उहे सेल्फीज़ जेके हिन क़ुरानदाज़ी में शामिल कबियूं, ऐं सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो। अव्हां बि 500 रुपियनि जो कैश इनाम खटी सघंदव, सिंपली तव्हांखे सेल्फी सेंड करणी आहे हैमे ब्यूटी क्रीम सां। सो मैसेज आयो आहे 888-1 ते, ही चवनि था बाबुल भा अहमद मुगल प्ले कयो त बहितर आधा। 888-1 वारनि लाइ गुज़ारत आहे, बाक़ी फरमाइश आहे लाइव कॉलर जे लाइ। सो लेट्स सी लाइन ते गॾु केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बाबुल भा, खैले क्लासरी ॻाल्हायां पियो, ज़रूरी कयां।
0: साईं मुंहिंजा ख़ुशि आहियो न अदा?
2: अलहमदुल्ला ख़ैर, तव्हां ॿुधायो।
0: अलहमदुल्ला साईं, अहमद मुगल ॿुधंदव या मुमताज़ लाशारी?
2: साईं मुमताज़ लाशारी।
0: ओके, कंहिंजे नाओ कंदव? चलो अवांजी महिरबानी भा, शामिल छा। त दोस्तो हींअर जेको आहे त मां अव्हां जे लाइ मुमताज़ लाशारी जो कलाम प्ले कयो आहे, तव्हां कलाम ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहिजो रौनक महफ़िल में। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां इस्तेमाल कंदव त विद इन 7 डेज तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे थो, ऐं तव्हां पाण जेको आहे त अंदाज़ो लॻाए सघंदव त हीउ प्रोडक्ट ॿियनि प्रोडक्ट खां बिल्कुलु डिफरेंट आहे। ही कलाम ॿुधो मुमताज़ लाशारी जी आवाज़ में ऐं रौनक महफ़िल में पूरे 8 वॻे ताईं मूंसां गॾु रहिजो।

0: हाँ नरद रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे ग्लो ब्यूटी क्रीम जिनमें शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खा बचा लाए कोजिक एसिड अई जिल्द मा दाग धब्बा निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन अई आर्बुटिन जेके दिन तव्हा जे चेहरे के कुदरती साफ अई चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्त शेख आया मां गुजारत छे जेका मां अनाउंस कयां पियो जेके आंसर ॾियण चाहिन त ॾेई सघनि था गुजारत चए पई त उहो केरु आहे जेको गूंगो बोड़ो ऐं अंधो आहे पर सच ॻाल्हाए थो इन जो जवाब तव्हां प्रोग्राम में शामिल थी ॾींदव एज़ वेल एज़ तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे इहा इस्तेमालु करण सां तव्हांखे 7 डेज़ जे अंदरि रिज़ल्ट मिली सघे थो ऐं अगरि तव्हांजे चेहरे ते वधंदे उमिरि जा असरात कुझु वधीक नज़र अचनि पिया तव्हांजी उमिरि जेकी आहे त घटि आहे पर चेहरे तां वधीक पई फील थिए चेहरे ते गुंझ अची विया आहिनि त इहे तव्हांजा सही थी सघनि था स्किन तव्हांजी बिल्कुल यंग थी सघे थी सिंपली तव्हांखे हेमे नेचुरल्स वारनि जी प्रोडक्ट खे आज़माइणो आहे छाकाणि त जिन आज़मायो आहे उन्हनि इहा ई ॻाल्हि कई आहे त वाकई बाबा हेमे आहे जहिड़ी ॿुधीसीं हेमे तहिड़ी निकिती थो दोस्तो इन जो हेल्पलाइन नंबर भी तुम नोट कर सको था जेकडे अवे शहर में हेमे ब्यूटी क्रीम अवेलेबल ना है तो जी इन जो हेल्पलाइन नंबर आ 0336-7135-407 जी हाँ नंबर वंस अगेन रिपीट क्या पे 0336-7135-407 इन नंबर से तुम कॉल करें हेमे ब्यूटी क्रीम के बारे में इन मालूम वी सो था जी पुछी सो था तो जी या हेमे ब्यूटी क्रीम तवे शहर के वेझे कड़े स्टोर से अवेलेबल है तो जी हिंसर जो प्रोग्राम में कॉलर की तरफ हलां पोसूँ तो लाइन से गए केर आन असो लाइव कॉलिंग नंबर है 0300-11-3488 असलम वालेकुम हाल अली गुल भा खुश आयो तबे ठीक है
2: बाबर भाव खैर लगो पे हम उनके चार का खुश हो तभी सही हम ना
1: अल्लाह जो शुक्र है भा केडो सिंगर बुधन चाहिंदा हो
2: जमन सफा
1: यो की माना
2: सफा संग सफा मोहिडा खत्म नहीं करें
1: हेलो ठीक है ता जी मेहरबानी है ता
2: चोरी है चंद्रा के सर चिमकाए दी
1: ता के चिमकायो तई हलो ठीक है मेहरबानी साईं तव्हांजी शामिल थिया तव्हां थैंक यू
2: मुंहिंजो दोस्त आहे करे
1: जी जी
2: इरशाद
1: शेख गोटकी लैट अहिड़ी फरमाइश कनि पिया ऐं मां अव्हांखे ॿुधाई थो हलां त हींअर मैसेज आयो आहे त बाबा अॻो छा जी गुलाम ख़ासि के लिए अगरि झंडू मरी खां कुर्बान अली ख़ासि के लिए अदा नूर मोहम्मद हिन गिबरानी काज में रेडियो जा आर जी ऐं लिसनर आया प्रोग्राम VIP थियो ख़ुशि थी चलो जी अदा असां ख़ुशि थी वियासीं तव्हांजो लखत वारा हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कयूं पिया लैट्स जी लाइन ते गॾु केरु आहिनि अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला ॿुधायो केरु था ॻाल्हायो अच्छा सखर से बात करें नाम बताना चाहेंगे आप
3: आपकी छोटी बहन
1: एक सेकंड में जो है
3: आपकी छोटी बहन
1: चले ठीक है ये बताएं कौन सा सिंगर आप सुनना चाहती हैं
3: आप अपनी किस्म से चलाए
1: अपनी पसंद का ठीक है और इनके बारे में आपकी क्या राय है अच्छा तारीफ सुनी है और इस्तेमाल नहीं की लेकिन
3: अभी तक नहीं
1: चले इट्स ओके आप इस्तेमाल करके देखेंगी तो आप खुद भी तारीफ करेंगी

713-5407 ते तव्हां कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था. सो हींअर प्रोग्राम में नंबर मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाए चुको आहियां 03000-11-34-88. सो हिकिड़ो ॿियो मुंहिंजी प्लेलिस्ट में गानो आहे जेको रौनक महफ़िल में 8 वॻे ताईं गॾु आहियूं. गुजारत बि मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां ऐं हिन गाने जे दौरान ई तव्हांजी लाइव कॉल्स इंक्लूड कयां पियो मूंसां गॾु जो, बल्कि गाने खां पहिरियां ई लाइव कॉलर्स खे शामिल कयां पियो छाकाणि त हाणे लाइव कॉलिंग वारो नंबर ओके थी चुको आहे. अस्सलाम वालेकुम.

हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बोटीन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

सोनी सर बिल्कुल जबरदस्त गानों तुम एंजॉय कर प्रोग्राम जो वक्त भी तकरीबन पैंजी पुरानी ते पहुंचे चुको अरे व्हाट्सएप जो वॉइस नोट्स हुआ मुख्य न हुआ मुख्य अभी थोड़ी कमी महसूस थी वॉइस नोट्स हूं तो मुझे मजो इन है बहरहाल अड लाइव कॉलर्स जो वारो हो लाइव कॉल्स शामिल करने की भरपूर कोशिश कई प्रोग्राम में गुजारे तो ही तो केर है जो गोंगो बोड़ो अंधो है पर हमेशा सच गाले तो दोस्तों वो है मिरर यानी आईनो ठीक है जिन जिन असा 888 से सही जवाब दिना उनमें सब का पैर अब्दुल गनी जुनी जो साहब आन बेन मुख्य कें भी जवाब को दिनों आए जस्ट ये मैसेज मोकलिया अन सो अब्दुल गनी जुनी जो साहब के लिए वेंदे वेंदे प्यारे प्यारे गानों प्ले क्यों तो वाया दोस्तों हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारा जो वेट कन्दा अवी सेल्फीज

स्पेशली तव्हां जेके हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा आहियो ऐं सेल्फीज़ मोकिलींदा आहियो त ही जेके आहिनि अव्हां जे हिन फीडबैक जो इंतज़ार कंदा आहिनि, छाकाणि त हिननि तमामु घणी महिनत खां बाद में मार्केट में इहा प्रोडक्ट लॉन्च कई ऐं मार्केट में जॾहिं इहा प्रोडक्ट लॉन्च कयनि त इन जो फीडबैक जे लाइ इहे मुंतज़िर हिन लाइ हूंदा आहिनि त हिन में जेके SPF 30 कॉजिक एसिड ऐं ग्लूटाथायोन शामिल कयो अथनि, इन जी ख़्वाहिश आहे त इन जो सभई फ़ाइदो वठनि, त तव्हां बि फ़ाइदो वठी करे इन जो फीडबैक ॾेई सघो था। 330 खां 360 रुपियनि ताईं इन जी क़ीमत आहे ऐं तव्हां जे शहर जे वेझे स्टोर ते ईज़ीली तव्हांखे अवेलेबल थी सघे थी। सो दोस्तो, हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे इहा तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे बाक़ाइदा तौर ते हिन जो फ़ाइदो मिले पियो ऐं हर टाइप जी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। स्पेशली तव्हां इन उन्हारे जे मुंद में इन खां सन प्रोटेक्शन वठी सघो था। त दोस्तो, वधीक मालूमात लाइ हिन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 0336-7135-407। जी हा, 0336-7135-407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हैमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था। त वेंदे वेंदे तमामु प्यारो प्यारो गानो आहे शैला गुल जी आवाज़ में, अवां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे। तव्हां गानो ॿुधो, इंजॉय कयो। अॻिले प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त। सदाई गॾु, अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

एलोवेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
1: अब आप सुनेंगे जे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अमेरिका ईरान जा के मुआदे का कापना हुरमुस में एक बेमथा हमला। वॉशिंगटन ए तेहरान एक बे की बेड़न के निशानों बणन सा गड एक बेमथा जंगबंदी की भजघड़ियन का इल्जाम भी लगाए छ्या। अमरीकी फौज पारा कशम ए बंदर अब्बास पोर्ट से हमलन की तस्दीक। एक माल पड़ताल जहाज ए बिन ऑयल टैंकर्स के भी निशानों बणाय वो। अमरीकी सेंटकॉम है अमरीकी जहाजन से हमलन बाद कशम ए बंदर अब्बास पोर्ट से बिन हंधन के निशानों बणाय वो। हमलन जो मकसद ईरान से बीहर जंग शुरू करण न है। ईरान के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स मूजिब अमरीकी हमलन जो भरपूर जवाब दिनो है। अपना हुरमुज ए चाबहार बंदरगाह वेझो अमरीकी फौजी बेड़न के निशानों बणाय वो। जंग के खात्मे कें हतमी मुआदे से पहुंचने लाय अमरीका के पैंजी तजवीजन से ईरानी जवाब जो इंतजार। ईरानी क्यादत अ को वाजह फैसलो न कर सकी। अमरीकी परडेही वजीर मार्को रूबियो है तो अज ईरान जो जवाब मिलन घुर्जे हा पर इन वक्त ताई को भी जवाब ना मिलो। उम्मीद है ईरान संजीदा गालियन तरफ बद। गुजर रात ईरान से कल हमला ऑपरेशन एपेक फ्यूरी जो हिस्सो न हुआ। असा मिजाइल फायर क्या वा तो जवाब जरूर डींदी। ईरानी परडेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई है तो ईरान अमरीकी तजवीजन से गौर कर रो है। कें हतमी नतीजे से पहुंचासी तो उनको ऐलान कंदी।
3: I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
4: Could you give us an update on what is the latest in those talks?
3: No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had...
2: झड़पन ए हमलन बावजूद ईरान से जंगबंदी बरकरार है। तेहरान से गालू जारी है। माहिदो कें भी वक्त थी सके तो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमरीका जा टे जंगी बेड़ा अपना हुरमुस पार कर जहाजन से ईरानी हमलन के नाकाम बनाय। ट्रंप की एक भेरों बीहर वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की
5: really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation.
2: ईरान परडेही वजीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त जॾहिं को सिफारती हल मेज़ ते ईंदो आहे त अमरीका गैर ज़िमेवारो मिलिट्री एडवेंचर करे छॾींदो आहे। को बि सबबु हुजे पर नतीजो हिकु ई हूंदो त ईरान कंहिं बि सूरत दबाउ अॻियां न झुकंदो। CIA असांजी मिज़ाइल सलाहियतनि जो ग़लति अंदाज़ो लॻायो। असांजी मिज़ाइल पैदावारी सलाहियत 28 फरवरी जी भेट में 75% वधीक आहे। ईरानी अवाम जे दिफ़ा लाइ असांजी तयारी 1000% आहे। गडियल कौमन में ईरान मुखालिफ अमरीकी ठहराव रद्द। रूस पारां ठहराव खत्े में चिकताण वधाइण जी कोशिश करार। गडियल कौमन में रूस से मुस्तकिल नुमाइंदे वेस्ली निबेनिसिया ईरान खिलाफ एक तरफो बयानियो ठाहिण वारी हर कोशिश के रद्द कयूं थिया।
1: अब आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधो प्या जी
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए होजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Cadet College Jagbabad. अब फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल
4: और दाखिला टेस्ट का इनेकाद 12 अप्रैल 2026 को होगा. राबता 0333-711-72.
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
6: तो ट्रेड हाई 3 अरब डॉलर्स मिल चुका है.

जंग जे खात्मे ऐं कंहिं हतमी मुआदे ते पहुचण लाइ अमरीका खे पंहिंजी तजवीज़ुनि ते ईरानी जवाब जो इंतज़ारु। ईरानी क़यादत अञा को वाज़े फ़ैसिलो न करे सघी।